जो बड़े सोहने ढंग 500 साल के गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तामीर की सी बनाए थे वो सारे थे उन्होंने इन्होंने दावे किया झूठ बोल बोल के झूठ लिख लिख के सिख का सोहना तस्वर सिंह की सोहनी ये मूर्ति ये परोपकारे ये दयालु ये सारी रुचियां का मारक ये वीर रस का जो है धनी जी तस्वीर धुंधली पेश की थी ये डाकू है जालम है जाबर है इस ढंग का गलत रूप पेश किया जवाब साढ़े को कुछ नहीं ना कोई अखबार ना रेडियो ना टीवी तो गलत तस्वीर बन दी गई और क्षमा करनी 500 साल का साडा सुनहरी इतिहास इन्हों दो साल धुआंधार झूठे प्रचार ने दावे किया मैं अज थे चरणों बेनती करा कि दो साल इन्होंने झूठ बोल के जोड़ा साडा इतिहास दावे किया है असी ये सिंह साहबान की बुलाई हुई इस कन्वेंशन वक्त तो वक्त एकत्रता समर्थन दे के उन्होंने दावा धोना है जेडे दाग इन्होंने दो साल लाए ने झूठ बोल बोल के तो खैर मैं संक्षेप में जो है अर्ज करा साहबान का अज जेड़ा पावन पवित्र वाक आया वो गल इन्नी है कि मन जिस दे नेड़े आवे उसका प्रभाव कबूल करता है मन परमात्मा के नेड़े है नहीं है पदार्थ के नेड़े है तो पदार्थ का प्रभाव ज्यादा पदार्थ झूठ तो झूठे पदार्थों का जिन्हों के ज्यादा प्रभाव है वो तो अज भी गुरु का साथ नहीं दे रहे अज भी पंथ का साथ नहीं दे रहे तो फिर मैं लवज दोहरा देना साहिब संकट वे सेवक भजे चिरम काल ने जीवे दो कुल लजे मालिक संकट बेच है पंथ संकट बेच है गुरु संकट बेच है ते तू अज नशे ते भजे बड़े बड़े संत मंद डेरेदार इस देश देच, साड़ी उम्मत देच मौजूद ने जिन्हों के कदमों के मत्था टेकते हैं असं थकते नहीं तो क्षमा करनी हूं देखना है कि इस विपता के समय कौन कौन साथ देने कि सिर्फ अपनी पूजा ही करानी है इन्होंने सिर्फ साढ़े मस्तक इन्होंने अपने कदमों से झुकाने या इस विपता के समय साथ भी देंगे ने इस कन्वेंशन सारियां सद्दा पत्र दिता गया राजियां प्रचारकां प्रबंधकां संतां मंतां ते तमाम गुरमत हितेशियां नूं सद्दा दिता गया ते मैं इत्थों ये दो लफ्ज जो है इस वास्ते थानू याद करा रहा कि कौन साथ दे रहा है कौन आएगा कौन आहदा नारा जो है मारदा है जुलम है वो अज भी गुरु का साथ नहीं दे रहे अज भी पंथ का साथ नहीं दे रहे ते फिर मैं लवज दोहरा देना साहिब संकट वे सेवक भजे चिरम काल ने जीवे दो कुल लजे मालिक संकट बेच है पंथ संकट बेच है गुरु संकट बेच है ते तू अज नशे ते भजे बड़े बड़े संत मंद डेरेदार इस देश देच साड़ी उम्मत देच मौजूद ने जिन्हों के कदमों के मत्था टेकते हैं असं थकते नहीं तो क्षमा करनी हूं देखना है कि इस विपता के समय कौन कौन साथ देने कि सिर्फ अपनी पूजा ही करानी है इन्होंने सिर्फ साढ़े मस्तक इन्होंने अपने कदमों से झुकाने या इस विपता के समय साथ भी देंगे ने इस कन्वेंशन सारियां सद्दा पत्र दिता गया राजियां प्रचारकां प्रबंधकां संतां मंतां ते तमाम गुरमत हितेशियां नूं सद्दा दिता गया ते मैं इत्थों ये दो लफ्ज जो है इस वास्ते थानू याद करा रहा कि कौन साथ दे रहा है कौन आएगा कौन आहदा नारा जो है मारदा है भी जुलम होया तशद्दत होया अनर्थ होया अन्याय होया बहुत वड्डा और मैं थां थां ते बोल के आया कि साढ़े देश की सेना बंगलादेश 90,000 पाकिस्तानी सेना का आत्म समर्पण करा सकती है ये कुल 50-60 सिर्फ बंदूकधारी जिन्हों के बारे मेरा ही झूठ बोलिया जा रहा है कि उन्होंने को भी सी ए भी सी ए भी सी उन्होंने पकड़न या मारन लिए अकाल तख्त के अडाणा लाजमी से जरूरी से जागदा नीयत ही पैड़ी थी मैं गालबन 2 साल पुरानी गल है मैनू परिक्रमा किसी ने एक पुस्तक दिखी थी भेट बैज्ञानी जी भैया मैं लिखी है तो तुम लो थानू भेटा ते मैं उस पुस्तक नू थोड़े जिहा सफे पढ़ के ते चल रहा सी सुते सिद्ध मिल गए उदों जथेदार साधु सिंह जी पौरा ओ सन आए सुभावत ते मैनू कहन लगे मस्किन जी अदब दे नाल चलो तुसी पुस्तक पढ़ के कदी सजे हो रहे खब्बे हो रहे हो।

रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। सारी अनेकता का जो आधार है वो एक है, ते इसे एक तो ये सारी अनेकता का जन्म है, एक मूल है, एक जो है आधार है। लेकिन एक ने ही अनेका रूप धारण किए हुए ने। जो अनेकता है इनू संसार कहने ने, जो एक है वो करतार है। जिथे तक आत्मा का गल है, विचार चलेगी आत्मा दी, वो तो एक है साढ़े शरीर दे। पर जिथे तक शरीरक संबंध की गल आएगी तो रूप बड़े ने। हुण एक बंदे दे सिर्फ कोई एक ही रूप दे उत्ते उहदी होंद नहीं खड़ी, अनेका रूप ने। एक बंदा जे किसी का प्यो है तो फिर किसी का पुत्र भी है, जे किसी का पुत्र है किसी का पति भी है, किसी का भरा भी है, किसी का पड़ोसी भी है, किसी का दोस्त भी है। बंदा एक है तो रूप उसके इतने ने। मनोविज्ञानी कहते ने जब बंदा पुत्रां दे सामने पिता दे रूप दे जांदा है तो चेहरे दे हाव भाव ते मानसिक मंडल कुछ होर होंदा है। ओही मनुख जद प्यो दे सामने पुत्र दे रूप च जांदा है तो चेहरे दे हाव भाव ते मन दे भाव कुछ होर ही होंदे। ओही मनुख जद पत्नी दे सामने पति दे रूप च जांदा है तो चेहरे दा रूप ते मानसिक मंडल मनुख दा कुछ होर हो जांदा है। ओही मनुख जद मित्र दे सामने मित्र दे रूप च खड़ा होंदा है, पड़ोसी दे सामने पड़ोसी दे रूप च खड़ा होंदा है, तो चेहरे दे हाव भाव ते मानसिक संस्कार कुछ होर आउंदे ने। ओही बंदा जद गुरु दे सामने सिख दे रूप च खड़ा होंदा है तो चेहरे दे हाव भाव ते मन दियां तरंगा कुछ होर आउंदियां ने। हुण बंदा एक है ते रूप इस दे इतने ने। एक किसे दा सिख भी है, किसे दा पुत्र भी है, किसे दा भरा भी है, किसे दा पिता भी है, किसे दा पति भी है, किसे दा पड़ोसी भी है, किसे दा दोस्त भी है। जितने रूप पुरुष दे ने उतने ही ये रूप नारी दे ने। जे नारी किसे दी मां है तां किसे दी भैण है, किसे दी धी है, किसे दी पत्नी है, किसे दी सहेली है ते किसे दी सिखणी है। मनुख पूरन ओही है जिहदे ये सारे रूप बेदाग होवन। ये सारे रूप मैं हैरान हाँ जिन्हां दे हथ सता आउंदी है, कई दफा देखी दा समुचा देश ते ओदी सारी ताकत किसी दे हथ समेट दई दी है, ते कम से कम ओदे सारे रूप ते वेखने चाहीदे ने। किधरे ऐसा तो नहीं ओदे सारे रूप दागी ने। जो मेरे पढ़न दे चाया चंगी पुत्री नहीं साबत हो सकी, पिता पिटदा ही रहा, आले दुआले दे बुजुर्ग मुखालफत करदे रहे पिता दा दिल तोड़ के, और चंगे चंगे बुजुर्गां दी विचारां ते लत मार के उन्हें कदम चुकया, चंगी पुत्री नहीं साबत होई। अगां चलिए फिर चंगी पत्नी भी नहीं साबत होई। पति हस्पताल दे बीमार पिया रहा, तलाक होई, पुछण तक नहीं गई, चंगी पत्नी नहीं साबत होई। अगां चलिए जो कुछ मां ते पुत दा झगड़ा मनजर आम ते आंदा रहा, उत्थों एक गल स्पष्ट हो गई, चंगी मां भी नहीं साबत होई। फिर होर मैं अगे चला ते जो मैं देखिया चंगी सस भी नहीं जो है साबत होई। रात नूं 12 बजे नूं नूं घरों कढ छड़िया। फिर चंगी दादी भी नहीं साबत होई, पोतरा रोंदा ही रह गया, पिटदा ही रह गया। जो चंगी धी नहीं साबत होई, जो चंगी पत्नी नहीं साबत होई, जो चंगी मां नहीं साबत होई, जो चंगी सस नहीं साबत होई, जो चंगी दादी नहीं साबत होई, क्षमा करनी, वो चंगी राजपाठ दी करंदा किस तरह साबत होवेगी। मनुख दे इना सारे रूपां तो ही अंदाजा लाईदा है कि वाकई ये मनुख की है। कमाल दी गल, जिंदगी दे हर पहलू दे जिसकी जिंदगी दागी होवे ते समुचा देश ओदे हत्थां च दे दिता जाए तो देश बर्बाद नहीं होएगा ते होर की है, देश तबाह नहीं होएगा ते होर की है। मैं अर्ज कर रहा सी जैसे अकाल पुरख एक है ते एक होंदे होया ओदे रूप अनेका ने।

0: गंगा बहा के ले गई, मंदिर ले गई, बगीचा ले गई। इसी तरीके नाल राजनीति दे उछाल आंदे रहने हर देश दे च, ते जद उछाल आंदे रहने बड़ियां तबाहियां होंदियां रहियां, बड़े खून खराबे, बहुत कुछ। ते मैं इंग्लैंड दे च दरिया थेम्स देखिया, 400 मील दी उसकी लंबाई है, ते 400 मील तक दोवें पासे बन बने आया, बन भी ए दरिया किसी शहर नूं किसी कस्बे नूं तबाह ना करे। और जो मेरे सुनने च आया, पहले थेम्स दरिया हर साल दे साल कस्बे रोड़दा सी, शहरां नूं तबाह करदा सी, खेतियां नेश तो नाबूद करदा सी, पर हुण असी 50-60 साल दा इहनूं काबू च कर लिया। दोवें पासे बन बना के 400 मील तक लंबा बन बना के समुंदर तक हुण इह उछलदा ते उछले पिया, पर साडा लंदन शहर डुबदा नहीं है, होर कस्बे डुबदे नहीं, खेतियां नेश तो नाबूद नहीं होंदियां, असी ते बन ला लिया। ते मैनू ख्याल आया ये बंदे किन्ने सियाने ने, अपना देश बचा लिया, दरिया दी तुगैनी आउंदी है, हड़ ते आउंदा है, पर हुण शहर नहीं बैंदे। पर ये होर भी इन्होंने महान सियाणप दिखाई है कि राजनीति दे च भी कोई ऐसा हड़ ना आवे कि लोगों दी खून दी नदियां बह उठन, कि लोगों के घर घाट तबाह हो, बर्बाद होवन। उन्होंने राजनीति नूं भी बन लाया, किसी का हक नहीं खोया जा सकता, किसी का हक नहीं मारिया जा सकता, अपने हक की तलबी की जा सकती है। हाइड पार्क च मैं खुल घूम लिया, इस तरह के 4-5 माइक्रोफोन लगे हुए, स्टेज पर कोई नहीं बैठा से, ते अगों जिहड़ियां कुर्सियां डठियां होईयां सन उहदे उत्ते 3-4 बंदे, ते नाल दे साथी नूं मैं पुछ लिया, मैं कि इत्थे कोई सभा होनी है, जलसा होना है, गल की है? कहण लगे नहीं, इह गौरमेंट की तरफों इंतजाम है, इस पार्क दे च माइक्रोफोन उन्होंने ला के रखे ने, जिस बंदे ने गौरमेंट के खिलाफ बोलना, किसी अफसर के खिलाफ बोलना, किसी मिनिस्टर के खिलाफ बोलना है, तो यह गौरमेंट ने इंतजाम कर रखे है भी वह बोले, ताकि सानू पता चले उहदे नाल की ज्यादती हुई है। अगर वह अदालत च नहीं जा सकता, अगर कोई होर हीले ते बहाने वह नहीं जुटा सकता, इत्थे आके दो बोल बोले उहदे व्यर्थ नहीं जाणगे, उहनू बकायदा नोट किया जाएगा और उहदी खोज की जाएगी, किसने इस दे नाल ज्यादती की और क्यों हुई है। वह किसी पद्धर से भी बोल सकता है, और अगर झूठ भी बोल गया तो उहदे उत्ते मुकदमा नहीं चलेगा। मैं कहा है हद हो गई, कमाल, गौरमेंट ने इंतजाम किया मेरे खिलाफ बोलो, ते खिमा करनी जिहड़ा खिलाफ बोले और झूठ भी बोले, गौरमेंट ने इंतजाम किया है, इत्थे ते गौरमेंट ने इंतजाम किया है, कोई सच ही ना बोले, बस जिहड़ा बोले एनएस लाओ, बाओ पाओ जेल च, ठोको। कितनी विपरीत दशा, कितनी उल्ट दशा। उत्थे दरियावां नूं बन लाया है, दरिया काबू दे च ने, उत्थे राजनीति नूं बन लाया है, किसे दा हक नहीं मारिया जांदा। ते इस दरिया दे च, इस मुल्क दे च जितने दरिया ने ना, खिमा करनी सारिया दे आले दुआले कोई बन कोई नहीं, जद हड़ ते आंदे ने, इह बिहार दे च, आसाम दे च, हुणे जिहड़ी पिछलियां बरसातां होईयां ना, तुहानूं पता होवेगा कितनियां तबाहियां होईयां, बंगाल दे च, मध्य भारत दे च, आले दुआले कोई बन है ने, दरिया उछाल ते आंदे ने, कोई कस्बा बहा के लै गए, कोई शहर बहा के लै गए, खेतियां नेश तो नाबूद कर गए। इत्थे दरियावां दे आले दुआले बन नहीं ने, इत्थों दी भोंडी राजनीति नूं भी खिमा करनी कोई बन नहीं लग्या। ए भी जद हड़ ते आउंदी है, जिवें उह गंगा हड़ ते आई, उदासी दा मंदर बहा के लै गई, इसे तरीके नाल गंदी राजनीति जद हड़ ते आउंदी है, ते अकाल तख्त नूं भी ढा के लंघ जांदी है। बोले सोनिहाल,
1: ओ टल गुरु सेविया, अहन सुसहज सुखाए, दर्शन परसे गुरु का, जानम मरण दुख जाए। वाहे सिख कसम दी, नूर अरसों पुरसों चटिया, तुद डठे सचे पातशाह, मल जानम जान।

आन दिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमाणी जिनका कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी।

ये तो ही कार्य ना आया कारया भरण सवारी सिज्जा कामन थाट बनाया सांग ना पायो अपने घरते पेख पेख दुख पाया सारो दिन से मजूरी करता तो मुसला कराया

0: पयो अनुग्रहो
1: जाका प्रभु को किस हृदय नाम
0: वसाया।
1: सार संगत का पाछा
0: परे
1: जानो नानक
0: हर रस पाया।
1: पयो अनुग्रहो
0: जाको प्रभु को किस हृदय नाम
1: वसाया।
0: साध संगत का
1: पाछा परे
0: जान नानक हर रस पाया।
1: वाहिगुरु जी का खालसा
2: वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साहब सिंह जी सनेमर फतेह कबूल करने वाहुर जी का खालसा वाहुर जी की पावन पवित्र वाक राग टोडी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का मूल जिहड़ा इस विशा प्रकरण चल रहा है जीवन दे लक्ष्य नूं समझे बिना जीवन बतीत करना व्यर्थ है। जीवन का लक्ष्य की है, क्यों जी रहे हैं, जीवन क्यों है, बगौर मुताला करेंगे किसी ने जीवन का लक्ष्य खाना पीना ही रखे है। एक साधन से लक्ष्य नहीं सी, किसी के जीवन का लक्ष्य परिवार है, धन संपदा है। इस तो अगे अज तक मनुख दियां निगाहां नहीं गई, इत्थे ही रुकियां जा, इत्थे ही रुकियां। तो साहब कहंदे ने यह लक्ष्य नहीं है, जीवन का यह लक्ष्य नहीं है, जीवन का यह निशाना नहीं है, जीवन का यह घर नहीं है। जिहड़े जिहड़े लक्ष्य बनाए ने यह तो साधन ने, साधन नूं लक्ष्य समझ लिया तो कुदरती गल है जब साधन ही लक्ष्य हो गया फिर लक्ष्य तो असल दे भुल जाएगा, भुल जाएगा। तो लक्ष्य बनिया हो लक्ष्य भूलिया होया। इस वास्ते अवतारी पुरुष कहते ने याद करो किसनों लक्ष्य नो, लक्ष्य की है परमात्मा, लक्ष्य की है ईश्वर, ये भूलिया होया। करीबन करीबन सारी कायनात नो भूलिया होया। की होया कोई करोड़ों विच एक अद मनुख नूं लक्ष्य दा पता है, लक्ष्य दी समझ है, बाकियां नूं नहीं है। जिस जिस नूं भी लक्ष्य दा बोध नहीं है, महाराज कहिंदे ने उहदा संसार ते आना व्यर्थ है, फिजूल फिजूल जी रहे है, व्यर्थ जी रहे है। इस तरह इस विचारधारा नूं धन गुरु अर्जन देव जी महाराज आरंभ करते हैं। मैं अर्ज करा सार्थक है उस मनुख का जीवना जिन्हों लक्ष्य की समझ है कि जीवन लक्ष्य की तरफ जा रहे है। लक्ष्य की कोई समझ ही नहीं है कि जब समझ ही नहीं है तो फिर जीवन उस पासे नहीं जा सकता। चंगे चंगे जिन्हां नूं असीं सतसंगी कहने हां, प्रेमी कहने हां, नितनेमी कहने हां, इन्हां दे भी जीवन का लक्ष्य परमात्मा नहीं है, नहीं। इन्हां ने भी साधन नूं ही लक्ष्य समझिया होया है कि किसे हद तक जो लक्ष्य परमात्मा है इन्हों साधन की तरह वरतदे ने। हे प्रभु तो ऐ करें तो ऐ करें तो ऐ करें, ये नहीं कि हे प्रभु तू मिले। उसका मिल जाना सब कुछ का मिल जाना है, उसकी प्राप्ति सब कुछ की प्राप्ति है। ठीक कहता एक सूफी, सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। कहता है जिस दिन का मैं रब नो मंगया है, उन होर कुछ मंगना चंगा ही नहीं लगता। रब को लिखे ही मंगया है, मैं रब नो ही मंगया है, और कुछ नहीं मंगया। परमात्मा कोलों की मंगया है, परमात्मा कोलों परमात्मा ने ही मंगया है। बड़ा सियाणा होवेगा, सूझवान होवेगा, तो ही सियाणा है। बाकी सब मूल ने जो परमात्मा कोलों होर ते मंग लेंदे ने, पर परमात्मा नु नहीं मंग रहे। ते जिहड़े होर मंगदे ने, सब कहिंदे ने मम्मा मांगन हार इयाणा, ये सब इयाणे ने, बच्चे ने, नादान ने, ना समझ ने। मम्मा मांगन हार इयाणा, इयाणे ने खिडौने ही मंगने ने। कई दफा खिडौणियां दी ममता करके, खिडौणियां दी पकड़ करके मां नूं भी भुल जांदा, प्यो नूं भी भुल जांदा। जरा वड्डा हो गया, खिडौने वड्डे हो गए ने, हुण परिवार करके निरंकार नूं ही भुल गए, हुण पदार्थां करके परमात्मा नूं ही भुल गए। परमात्मा कोल अगर कुछ मंगण वास्ते भी जांदा, किसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कोई साधना भी करदा, जप तप भी करदा, परमात्मा कोलो मंगदा है, परमात्मा नूं छोड़ के सब कुछ मंगदा है, सब कुछ मंगदा है एक परमात्मा नूं छोड़ के। जिहड़ा जिहड़ा मंगदा है और जो कुछ मनुख मंगदा है, वह ते गुरबाणी कहिंदी उह बिना मंगिया ही दे रहा है। अण मंगया दान देवना, कहो नानक सच संभाल दियो। साड़ी मेहनत कोई भी संसारी अजाई नहीं जाती, और जो साड़ी प्रालभ होंगी वह तो मिलता जा रहा है, बिना मंगया ही मिलता जा रहा है। इस वास्ते साहब कहिंदे ने मांगन मांग मंग, मांगन मांग सो एक है मांग, उस एक नो ही मांग छड़ बाके, बस उस एक नो छड़ के ही सब कुछ मांगदे हां। चंगे चंगे सतसंगी नितनेमी प्रेम, महाराज कहने ने मांगन मांग सो एक है मांग, नानक जाते परे परा। सारे धंधियां तो सारे दुखां तो मुक्त हो जाए, उस एक नो मांग। सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। कहिंदा जिस दिन दा मैं ए मंगया है, हुण होर कुछ भी मंगना चंगा नहीं लगता। पर परमात्मा लक्ष होवे तां ऐसा हुंदा है। सतसंग कीता होया किसदा सफल, जिन्हें जीवन का लक्ष्य परमात्मा नो समझ लिया। सत्संग कीता सफल होया, ते जन्म किसका सफल होया, जेदा जीवन लक्ष्य तक पहुंच गया। ये दो तरह की सफलता है। पहली सफलता कीर्तन सुनन दी, कथा सुनन दी, जप तप करन दी, दान पुन करन दी, सत्संग विच जाण दी सफलता। किस दिन सफलता? जिस दिन जीवन का लक्ष्य केवल गुरु नु रख दिता है, परमात्मा तो ही मिल। ये सत्संग का फल मिल गया, समझ मिल गई, पता चल गया। पर संसार से आया ये मिलया हुआ जन्म, ये कदों सफल होवेगा? जब जीवन लक्ष्य तक पहुंच गया। एक समझना है, एक प्राप्त करना है। जिनू जानना है उन्हों प्राप्त करना है, जिनू प्राप्त करना है उन्हों पहले जानना है। ऐसा कुछ ख्याल मेरे पातशाह ने इस वाक विच दिता है। उस परमात्मा तो बिना जो जो भी मंगना है तो किसी होर चीज नू लक्ष्य रखना है। इस पावन पवित्र वाक विच मेरे पातशाह ने उदाहरण प्रमाण दृष्टांत बड़े सुंदर दिते ने, बड़े प्रबल दिते ने। इस वास्ते उस सारे दृष्टांत भी आप जी के सामने खोलिए, लड़ीवार आप वाक नू सरवण करो, प्यार नाल आखो सतनाम श्री
0: ਟੁੱਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ।
2: ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਿਅਰਥ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਣਾ ਵਿਅਰਥ। ਜੇ ਲਕਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਹਾਂਜੀ
0: ਅਨਕੂ ਸਾਜ ਸ਼ਿਗਾਰ ਬਹੁ ਪਰਤਾ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਡਾਇਆ।
2: ਜਿਤਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਵਾਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਛ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕ, ਕੋਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਡੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਮਾਗਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਤਵੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ 20-25 ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ। ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 20-25 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਕਵਾਨ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪੰਡਿਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੁਮਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਡੰਗ ਦਾ ਸੰਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਧਰੇ ਜਰਮਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਦਸੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਬੇਗੋਵਾਲ ਗਏ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਬਕਸੇ ਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਕਸੇ ਚ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਖੋਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਗਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੈਸੇ ਬਕਸਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਬਕਸੇ ਦੇ ਖੋਲਦਿਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਉਹ ਮੁਰਝਾਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕੁਛ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਿਤਾ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਮੁਰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਚ ਪਏ ਨੇ ਕੁਛ ਮੁਰਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਛ ਮੁਰਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਨੇ ਕੁਛ ਮੁਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਵਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਂਦ ਤੇ ਮੌਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਮੌਤ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੈਸੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਇਹ ਫਿਰ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਸਾਧਨਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਜਪ ਤਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ तो महाराज कहिंदे ने फिर मुर्दे ही ने ये मुर्दे जरा चलदे फिरदे ने कदी घर दे चौंदे ने कदी बाजार दे चौंदे ने कदी दुकान दे चौंदे ने कदी फैक्ट्री दे चौंदे ने सब चलदियां फिरदियां लाशां महाराज ऐसा कह रहे ने और भी ऐसा फरमान करदे ने नाम बिना जेता व्यवहार गुरु अर्जन देव जी नाम बिना जेता व्यवहार ज्यों मेरे तक मिथया सिंगार सारा हार शिंगार मुर्दियां दा सिंगार मुर्दे शिंगार है कब्रिस्तान दे शायद इतनियां कबरां ना होवन जितनियां चलदियां फिरदियां कबरां दिखाई दे कुछ भी नहीं है जीवन दे कुछ भी नहीं जरा फोल के देख लेना सिवाय मुर्दमी तो होर कुछ भी नहीं निकले सिवारे रोने पिटन तो होर कुछ भी नहीं निकले खोल के देख लेना मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना हर मनुख ने पता न कितना रोना छुपाया होया कितना दुख छुपाया होया ये हस दे मुस्कुरांदे चेहरे पता नहीं कितना रोना छुपाई बैठे ये चमक दे ते चुपड़े मथे कितना कलेश छुपाई बैठे ने ये घरां दी खामोशी पता नहीं कितने भांबणा नु छुपाई बैठी है बस ये चलदियां फिरदियां लाशां ये कबरां ये शमशान घाट महाराज इस तरह कहंदे ने भावे कितना शिंगारे है कितना साजो समान है कितनी धन संपदा है महाराज कहंदे ने ध्यान नाल इस नु विचारना है मुर्दा शिंगारे है मुर्दा शिंगारे जिंदा नहीं है जिंदा ते तां हो सकदा से सो जीविया जिस मन वसिया सोए नानक अवर न जीवे कोई नहीं जीवदा बाकिया दे मन ते मरे हुए ने इस मरे हुए मन नु इस तरह लेना क्योंकि तार्किक तर्क कर सकदा है तन दे तल ते जो मर गया जिंदा नहीं हो सकदा नहीं हो सकदा चलो मैं एक थानू घटना भी सुनावा सिंगापुर दे च घटना घटी एक चंगे धनाढ़ दा नौजवान लड़का चलाना कर गया सिंह ये घटना बड़ी मशहूर इत्थों ही अमृतसर दे निकटों संत गए हुए सन अपने आप नू संत कहिंदे सन लोकी मनदे ने इस तरह दे संतां नू ही संत आखिया जांदा है मनिया जांदा है गुरु गोबिंद सिंह दा बाणा ते उतार के उन्होंने बाणा अपना दिता होया उन्होंने कहा इसनू घर दे च रखो शीशे दे बक्से च अगले साल मैं आवांगा इसनू जिंदा करांगा मलेशिया सिंगापुर दे च एक घटना बड़ी मशहूर हुई जिंदा करांगा बदकिस्मती समझ लो मैं उन्हां दे नज किधरे उत्थे ही सी ते उसे ही गुरुद्वारे कथा कर रहा सी जिथे वो आए मैं कह बैठा मैं कह साल बाद एदियां हड्डियां भी नहीं लगनियां आखदा पिया संत आखे पिया तो तनाव खड़ा हो गया मेरे नाल झगड़ा शुरू हो गया कहन लगे साल उड़ीके बिना तुसी किस तरह कह सकदे हो मैं कह मैं कह सकदा रब्बी नहीं है ईश्वरी नहीं है मैं प्राण निकल चुके ने डॉक्टरों ने कह देता है मुर्दा है नहीं जिंदा होएगा नहीं होएगा साल बाद वो कहने जिंदा करांगा मैं कह साल बाद शायद इसका मांस भी ना लवे हड्डियां भी ना लवे ये तनाव काफी वधिया मैनू बड़ा बुरा वला आखे ते ओ जिन्हां दा लड़का गुजरिया सी कहिंदे सानूं पता नहीं है संत सराप दे देणगे ते मैं कहा फिर समझ लेना मैनूं सराप लग जाए ते फिर सच समझ लेना ते जे ना लगे तो फिर मेरी गल नूं सच समझना उन्होंने शीशे दे बक्से दे जद घर दे च रखण दा यतन कीता ते पुलिस घर पहुंच गई मुर्दा घर दे च नहीं रख सकदे सिंगापुर दे कानून दे मुताबिक कब्रिस्तान दे दफन करना पए
3: تو ہم مسلمانوں دا قبرستان انہوں نے انکار کر دیتا ہے سکھ ایسے نہیں دفناؤن دینا عیسائیاں دا قبرستان انہوں نے بھی انکار کر دیتا اتھے صرف عیسائی دفن ہو سکتے ہیں بودھیاں دے قبرستان دے دفن کیتا تے سنتا نے کیا سال بعد زندہ کرانگے سال تو پہلے پہلے سنت آپ چلانا کر گئے انہوں نے بھی شیشے دے بکسے جا رکھ کے سوار کے رکھنا پیا کیونکہ انہوں نے بھی اس طرح کی وصیت کیتی ہوئی سی شاید سوچ دے ہونگے دو چار سالاں بعد میں زندہ ہو جاواں گا بکسے چ ہی رکھنا میں پر چونکہ وہ بہتیاں نو اپنا چیلا بنا رہے چیلا بنا چکے سن تے چیلے سارے دھنوان سن تے دھنوان کوئی سو دے چھ ایک قد کول عقل ہوندی ہے باقی تے عقل نو تالے لا کے ہی رکھ دے باقیاں دی عقل تے بس دھن نہیں ہوندی اور کچھ نہیں اس تو علاوہ انہاں دی عقل نہیں ہوندی مایا داری ات انا بولا یہ تے اندھے ہوندے نے نہ سچ ویکھ سکدے نے نہ سچ سن سکدے نے میں اے لفظ بھی کہے میں کہ تھانوں گربانی دی سچائی نہ سنائی دے رہی ہے نہ دکھائی دے رہی ہے تو میں کہ گربانی دی روشنی چ کیا جا سکدا ہے اندھے ہو اج اس گھٹنا نو اندازن 25-26 سال ہو گئے نے شاید اس تو بھی زیادہ

मत है कि स्वाद प्रभु दै अकाल पुरख दै ईश्वर दै। इस तो बाद दर्शन नसीब होए, मथा टेकया और अकबर ने बेनती की थी, मैं 100 पिंड जागीर देच आप जी नू देना ताकि ए लंगर आप दा खुश असलूबी नाल चल सके। तां गुरु अमरदास जी महाराज कहन लगे, ए दसा नौहां दी किरत जो सिंह करदे ने उस दसवंद नाल लंगर चलदा है, शहनशाही खजाने चो नहीं चलाया जा सकदा। असी ए मर्यादा बनाई है कि हकूमत दे खजाने तो लंगर नहीं चलेगा, ए लंगर चलेगा किरती लोगां दी किरत दा जो दसवंद दसवां हिस्सा है उस तो चलेगा, ताकि लंगर दा स्वाद बनिया रहे, रस बनिया रहे। आपने सख्ती नाल दसवंद दी मर्यादा नूं भी लागत कीता। भई ओही सिख है जो अपनी किरत दा दसवां हिस्सा दान दे रूप च अर्पण करदा है गुरु नूं या लोड़वंदा नूं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ते ऐसा लिखे है कि जो बाबे के दाम न दे हैं तिन ते गह बाबर के ले हैं। जो रब दे नां दा दसवां हिस्सा नहीं कढ़दा, कोई ना कोई ऐसा दूत आउंदा है ओदे नाल उसका सब कुछ ही चला जांदा है। ए बंदे नौ हिस्से तू रख ले, दसवां गुरु दा है, धर्म दा है, ईश्वर दा है। उंज भी एक सार किताबली दा करता कहिंदा है, धन के भागी चार हैं, धर्म चोर निरप आग। अगर धर्म दा हिस्सा नहीं दिता गया तो चोर ले जाएगा, अग्न भेंट हो जाएगा या राजगर्दी दे जेर असर हो जाएगा। खैर गुरु अमरदास जी महाराज ने इस ढंग दी लंगर दी अगम्मी परंपरा तोरी, चारों पासे आपदा जय जयकार होया। धन गुरु अंगद देव जी महाराज दे साहबजादे दातू जी दासू जी कहिंदे ने, ए जस ओ नहीं सहार सके। जैसे वक्ती तौर ते बाबा श्री चंद ते लक्ष्मी दास नू रोस होया सी कि साडे पिता दी गद्दी लैणा जी लै गए, इस तरह गुरु अमरदास जी महाराज दे गद्दी विराजमान होण ते दातू जी नू ते दासू जी नू भी बड़ा रोस चढ़िया। अज शरीकां दे भड़काए हुए और शरीकां ने कन्न भरे, देखो जात पात दी परंपरा ही तोड़ दिती गुरु अमरदास जी ने, वर्ण वंड दी परंपरा ही तोड़ दिती। और ए सिर्फ दातू ही नहीं, मरवाहा इत्थे अकबर दे दरबार विच फरियाद भी लेके चला गया सी कि भारत दी जो पुरानी संस्कृति है, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैस, ए चार वर्णा दी मनोत ए गुरु अमरदास ने तोड़ दिती। और साहिब गुरु अमरदास जी महाराज दा उपदेश भी, जात का गर्व न कर मूरख गवारा, इस गर्व ते उपजे बहुत बेकारा। गवार है ओ जो जात अभिमानी है, वर्ण अभिमानी है। आपदा उपदेश कि जन्म तो कोई ब्राह्मण नहीं, जन्म तो कोई शूदर नहीं, जीवन तो शूदर होवेगा, जीवन तो ब्राह्मण होवेगा। दातू जी ने एकदम संगत दे चा के सतगुरु देव जी महाराज सिंघासन ते बैठे सन, सीने दे खिच के लत मारी। बिरद शरीर 84 साल दा सिंघासन तो थले गिरे, एकदम अपने आप नु संभालिया है। ते संभालदिया सार आपने दातू दे कदम पकड़ ले, चरण पकड़ ले और जो बेनती की थी सिख जगत दे महान इतिहासकार कवि ते ब्रह्मनिष्ठ चूड़ामणि भाई संतोख सिंह जी ने इंज लिखे ने, एक तो सेवा करत रहे हूं, द्वितीय बैते बिरद भय हूं, या ते अधिक शरीर कठोरा, तुमरे चरण मृदर नै थोरा। ए दातू जी,
एक ते मेरी उम्र वडे।

शरीर स्वस्थ खेण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सत्संग जीओ, गुरमत विचारां, गुरबाणी विचार आप सेवा पंथी रतन भूषण महंत तीरथ सिंह जी पासों गुनियाना मंडी वाले उन्हां पासों आप सरवण कर रहे सी। इस माहौल विच, इस सत्संग विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने जो ख्याल बख्शिश कीते ने वो मैं सेवा दे रूप विच आप जी दी झोली च पाउण दी निमाणी कोशिश कर रहे। सानू साडी होंद नूं अज तक ते विचारकां ने चार हिस्सियां विच वंडिया। प्रथम ते परमात्मा, क्योंकि उस विच असी हैगे आं, वो साडे विच है तो वो है। फिर इसनूं इस तरह वो व्याख्या दे रूप विच लैंदे ने सूरज। सूरज दी किरण है, किरण दा प्रकाश है, फिर जिथे प्रकाश है वो है। मैं फिर दोहरावां, सूरज है एक, फिर किरण है दो, फिर किरण दा प्रकाश है तीन, फिर जिथे प्रकाश है जो कुछ प्रकाशित हो रहे वो है। परमात्मा है, जीव आत्मा है, मन है, और ये सब कुछ जिथे घटित हो रहे है, प्रगट हो रहे है, वो ये तन, वो ये शरीर, वो ये तन। हुण मैं फिर दोहरावां, सूरज है, किरण है, किरण दा प्रकाश है, ते प्रकाश जिथे पै रहा है, जिथे है, जिस तों जिहड़ी चीज प्रकाशित हो रही है वो है।

कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम किरण ते सूरज भावे अलग नहीं फिर भी दो प्रतीत हो रहे ते नाम भी दो पैगन एक सूरज एक किरण दो ना होंदे हुए भी दो दिखाई दे रहे ने चूंकि दो दिखाई दे रहे ने तो नाम भी दो पै गए सूरज और किरण सागर ते लहर दो ना होंदे हुए भी दो दिखाई दे रहे सागर ते लहर चूंकि दो दिखाई दे रहे ने हैं ते नहीं इस वास्ते नाम भी दो पै गए सागर ते लहर है ते सागर ही सागर लेकिन सागर झलक रहे है लहरां विच है ते सूरज ही सूरज पर सूरज झलक रहे है किरणां दे चूंकि दिखाई दो दे रहन है न नहीं दो एन नहीं एको ब्रह्म द्वितीया नास्ती ऐसा वेदांती कहते ने एको ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं फिर भी चूंकि दो दिखाई दे रहे हैं पर जब दो दिखाई दे रहे हैं ते नाम भी दो पै गए ने फिर इसका विस्तार होया फिर दोवां तो चार होए एक सूरज दी किरण एक किरण का प्रकाश एक प्रकाश दे जो प्रगट हो रहा है दिखाई दे रहा है ओ अगर ये प्रकाश ना होवे तो नहीं दिखाई देगा। मैं कई दफा अर्ज कर चुके हैं अंधेरे तो वड्डा कोई पड़दा नहीं है अंधेरे ते हिमालिया पर्वत भी नहीं दिखाई देंदा अंधेरे ते इतना वड्डा सागर भी नहीं दिखाई देंदा जमीन तो कई गुणा वड्डा फिर भी नहीं दिखाई देंदा अंधेरे ते सारा शहर भी नहीं दिखाई देंदा ऊंचियां ऊंचियां बिल्डिंगा नहीं दिखाई अंधेरे ते जंगल भी नहीं दिखाई देंदे सड़कां भी नहीं दिखाई देंदियां एक लख मनुख बैठा होवे एक भी नहीं दिखाई देंदा इस वास्ते अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा भी नहीं है बहुत वड्डा पर्दा बहुत वड्डा पर्दा अंधेरा सब कुछ नू ढक देंदा है प्रकाश सब कुछ नू प्रगट कर देंदा है प्रगट कर देंदा तो मैं अर्ज करा जो कुछ भी प्रगट है ये आत्मा दे प्रकाश करके ही

इस दौर दे इस कामी युग दे छम कहियत कल युग के कामी जो संतान पैदा हो रही है कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार जिन भूत पैदा हो रहे हैं पुत्र जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदा पुत्र ते जिन भूत है ती भी जिन भूत है कोई मीरा नहीं पैदा हो रही माता भाग कौर नहीं लैला पैदा हो रही है कोई कबीर कोई रविदास कोई भाई मनी सिंह कोई भाई गुरदास नहीं पैदा हो रहे मजनू पैदा हो रहे क्यों मां बाप शरीरक तल तो उच्चे ही नहीं उठ सके दोहां दा मिलन पहले शरीरक होवे सहजे सहजे एजत शरीरक तल तो उच्चे उठन उस समय ना दे घर औलाद आवे भगत आणगे दार्शनिक आणगे विज्ञानक आणगे संत आणगे पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके वासना तो उच्चे ही नहीं उठ सके और इसे दल दल दे फसे रहे तो औलाद आएगी जिन ते भूत जिन्ना ते भूता नाल ए युग ए संसार भर गया जिन भूत जो अदृश्य रूप दे पहले कर्म कर दे सन दृश्यमान रूप दे ए मनुख आज कर रहे हैं जिन भूता नु काबू करना औखा सी अजोकी औलाद नु काबू करना औखा है बहुत औखा है कठिन है ए कॉलेज स्कूलां दियां कुर्सियां तोड़ रहे ने उस्तादां नु मार रहे ने तरह तरह दे कुकर्म कर रहे ने और किधरे भी सील नहीं संजम नहीं उसका मूल कारण है मां बाप दा जीवन प्रार्थना नहीं बन सकया वासना ही बनिया रहा मां बाप दा जीवन राममय नहीं हो सकया सिर्फ काममय होके रह गया बादशाह कहंदे ने रन्ना होइया बोधिया पुरख होए सयाद सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज रन्ना होइया बोधिया स्त्रियां बहुत चंचल बहुत चंचल दिन रात अपने रूप दी प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नु देखना यही उना दी जिंदगी दा लक्ष्य बन गया भगत कबीर भी कहंदे ने वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी जिथे वेद पढ़दिया पढ़दिया पंडित इसे जी खप गए उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसे जी खप के रह गई रूप पेख पेख नारी स्त्री प्रथम अपना रूप वेखदी है पर महसूस कर दी हां हूं ठीक है फिर विखाण लई निकलदी है रूप दी प्रदर्शनी शरीर दी प्रदर्शनी और यही चाव यही शौक वद्दा जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटदा जाएगा मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकदा कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारां दे और नगन होके भी नच सकती है थिएटरां दे हां वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई होवे रूप नु वेखना ते विखाना यही जिंदगी दा लक्ष्य होवे तो फिर शरीर तो कपड़ा हटदा जाएगा हटदा जाएगा हटदा जाएगा अर्ध नगन और फिर अल्फ नगन इस तरह उसकी प्रदर्शनी होवेगी पुरख होए सयाद सयाद शब्द फारसी दा है
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਗਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਅਜੇ ਇਤਨੀ ਧਨਾੜਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਧ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਆਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਧ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੂਬ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਸ਼ ਨਾਵਲ, ਜਿਨਸੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਖੂਬ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਨੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁੱਖ। ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਾਨੀ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਪ ਸੁਖ ਪਵਿੱਤ ਚੰਚਲ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ, ਔਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਚੰਚਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁੱਛ, ਇਸੇ ਹੀ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।

क्रोध, बहुत वड्डी सुंदरता अपने विचों पैदा कर सकता है, बीज है। मूर्ख इस बीज नो अपने कोल रख लेंदा है, सेना इस बीज नो गोड़दा है, बोंदा है, और बोना बस यही है अपने मन नो प्रभु नु समर्पित करना, नाम भी जोड़ना। क्रोध नाल भरे होया यही मन दया नाल भर जांदा है, रब्बी स्वपन नाल भर जांदा है, अत्यंत कोमलता नाल भर जांदा है। इस नु खत्म करन दा यही इलाज है प्रभु चिंतन, प्रभु चिंतन, उस विच अपना मन जोड़ना। सार किताबली दा करता बहुत सुंदर कहिंदा है कि धर्म पैदा किवें आउंदा है, धर्म नष्ट किवें आउंदा है। आखिर धर्म देच दया आ जांदी है, धर्म देच संजम आ जांदा है, धर्म देच संतोख आ जांदा है, धर्म दे सारे दैवी गुण आ जांदे ने, शील संजम आ जांदा है। ए धर्म किस तरह पैदा हुंदा है और ए धर्म किवें विनिष्ट हुंदा है, नास हुंदा है, तो सार किताबली दा करता इंज लिखदा है।

तान कर धर्म वधे नित रसना ते प्रभु दा नाम ले आइए उस सच नु सत नु रटन करिए उस विच मन जोड़िए धर्म पैदा हो जाता है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जाता है और परोपकार कीते हैं दान पुन कीते हैं धर्म दा ए बूटा सहजे सहजे वधदा है उठदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म दा बूटा क्षमा दे आसरे दे टिकया रहिंदा है। कोमल बूटे गिर ना जान ढह ना जान तूफानी हवावां उना दिया जड़ा ना पुट देन तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं किसे सोटी दा किसे दीवार दा। तो क्षमा दी सोटी नाल क्षमा दे सहारे खिमा दे सहारे ए धर्म दा बूटा रोज रोज वधदा है उच्चा हुंदा है उच्चा हुंदा है। स्थिते धर्म खिमा के संगा धर्म क्रोध कर होत विभंगा छिन मात्र क्रोध कर दिया धर्म दा बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध ऐसी अगन पता नहीं कितने दिनों की तपस्या नूं जला के रख दें दी कितने दिनों की साधना कितने दिनों का परोपकार। वाकई अगर एक बूटा छह महीने साल सिंच के वड्डा कीता है बस एक चिंगारी उसनु भस्म कर सकती है। क्रोध दी छणक अगन छोटी जी अग्नि कीते किताए पैदा होए धर्म नु नष्ट करके रख देंदी। क्रोध वास्तविक मूर्खता दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। क्रोधी स्याणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दिया ने। जर्मन दी गल है एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को मुर्दा रोंदी हुई चीखदी हुई।

चरों और चौतर की मत दूर निवारों। अंधा कर देंगा जिन्हां दियां निगाहां बड़ियां लंबियां ने, जो दूर तक वेखदे ने अपने पैरां नूं भी नहीं देख सकनगे कित्थे खड़े आ, मैनूं भेज के ते देखो। अंधा कर देंगा जो पारदर्शी ने, पार तक देखदे ने और आर भी नहीं दिखाई देगा। जो लंबियां निगाहां रखदे ने, लंबी नजर रखदे ने, दूरदृष्टता रखदे ने, ए भी नहीं देख सकने कि किथे खड़े हैं, मैनू भेज के देखो। अंध करो दृगवंतन को, श्रुतवंतन को बदरो कर डारो। जिहड़े विचारक ने, सूझवान ने, पागल करके रख देंगा, हिला देंगा उन्हां दी सोचनी नूं, हिला देंगा उन्हां दी विचार शक्ति नूं। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो। धीरजवान नूं, सबरवान नूं मैं बेसबरा करके रख देंगा, जल्दबाज बना देंगा। क्रोधी बहुत जल्दबाज होंदा है, जल्दबाज बहुत क्रोधी होंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बड़े सुंदर वाक जफरनामे दे आपने औरंगजेब नूं इंज लिखे है, चे खुश गुफ्त फिर दोसी है खुशतर जवां के जूदी बवद कारे आहिर मना। ऐ औरंगजेब, कितना सुंदर लिखे है तेरे हमदीन जनाब फिरदौसी ने, ईरान दा मायानाज शायर, महान सूझवान, दूरदृष्ट है। औरंगजेब चल, तू मेरे बोला तो कुछ नहीं सीखिया, ना सीखना चाहना है, कम से कम फिरदौसी नू पढ़ लेंदा, फिरदौसी दे बोल सुन लेंदा। चे खुश गुफ्त फिरदौसी है खुशतर जबां के जूदी बद कारे आहिर मना। कितना सोना उसने लिखे है कि जल्दबाजी करना शैताना का काम है। तुम बहुत जल्दी की थी क्रोधी, बहुत जल्दबाज आंदा है तू, इसी जल्दबाजी दे प्यो नु कैद कीता, ब्राह्मण नु कतल कीता, भैन जहां आरा नु भी जेल दे पाया। और ऐर औरंगजेब, तेरी इस जल्दबाजी ते इस क्रोध ने पता नहीं कितने मासूमा दी जान ली। सरमद जैसे सूफी फकीर, फिर मेरे मासूम लाडले, फिर त्याग ते वैराग दी मूर्ति, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दी शहादत, सब तेरे क्रोध दा कारनामा, सब तेरी जल्दबाजी दा कारनामा। तू रंचक मात्र भी सोचिया नहीं। पंडित गुलाब सिंह जी ठीक रखते ने, क्रोध कह रहे है सोचेगा ही नहीं मनुख, उस दे धीरज ही नहीं रहेगा, दूरदृष्टता ही नहीं रहेगी। जितना सियाणा होवेगा मूर्ख हो जाएगा। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो। हित कारज नाए पिखे कबही, जिनके उर भीतर मैं पग धारूं।

है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र दिवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें, तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें, तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठग गया कर दें, उना नु भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनु मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उना नाल भी ठगी करदा है, तू ते उना नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना कीजे जे का पार वसाए, लोभी ते भरोसा औखा है, और आज दे युग दे चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात होंदा है, उस दे भरोसे नो बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नो मेरे पातशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दिती है।

0: भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, क्रंग विच मुंह मारना, हड्डी विच जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, यह लोभी दी मनोबिरती है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग दे एक शब्द विच बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है।
1: इक स्वान दोए स्वानी नाल।

हे कृतार्थ, धारणक हो गया। धारणक जो शमशान घाट पिच बैठ के उड़ीक कर देने कदों कोई लाश आवे, कफन मिले, पांडे मिलन, पैसे मिलन, कदों कोई लाश आवे, सड़ियां लकड़ियां बिकन, कदों लाश आवे, सानू मेहनताना मिले, साजो समिग्री मिले, जिसदी उपजीविका, जिसदी रोजी, जिसदी उड़ीक किसी दी मौत ते खड़ी है, और जो सवेरे तो लेके शाम तक, रात तक इसे उड़ीक च रवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, ऐसे मनुख दी रूह भी मुर्दा हो जाती है, ऐसे मनुख दा इखलाक भी मुर्दा हो जाता है, ऐसे मनुख दा आचरण भी मुर्दा हो जाता है। शेख सादी ने एक बड़ी सुंदर कविता, शायरी गुलिस्तान विच कीती है। फरमान है उना दा, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त, मैथो इंसाफ दी गल पुछो, बद बख्त कौन है, बद किस्मत कौन है, कि दर राह तश रंज दीगर कस अस्त, जिस दी राहत दूजियां दी रंज ते खड़ी है, जिस दियां खुशियां दूजियां दे रोने ते खड़ियां ने, जो दूजियां दी बर्बादी विचों आबादी लभदा है, जो दूजियां दी मौत विचों जिंदगी लभदा है, जो दूजियां दे नुकसान विचों नफा लभदा है, जो दूजियां दी बेइज्जती विचों इज्जत लभदा है, जो दूजियां दे रोने विचों हासे लभदा है, इते बड़ा बदबख्त, बड़ा बदबख्त, सारा दिन ए उड़ीक होवे, ए सोचनी होवे, मरे किसे घर विच कोई मनुख, मौत होवे किसे दी, खत्म होवे कोई, लाश आवे, मैनू कपड़े मिलन, मैनू साजो समिकरी मिले, मैनू धन मिले, इस तरह दी सोचनी इखलाक दा पतन कर देंदी है। ठीक है, अगर ए पेशा है, धंधा है किसे दा, पर सोचनी विच ना ले आवे, उपजीविका प्रभु ते सुटे, सेवा दे रूप विच करे, सोचे परमात्मा दी तरफों यही मेरी ड्यूटी लगी है, तो ये सारी सेवा करदे होया उदी उपजीविका ते चलेगी, पर उसका इखलाकी पतन नहीं आवेगा, उदी मनोवृत्ति थल्ले नहीं जाएगी। पर ओ ही सिर्फ धारणक नहीं जो शमशान घाट विच बैठ के सारा दिन मुर्दियां दी उड़ीक करदा है, ते किसे घर विच मौत होवे इसकी उड़ीक करदा है, नहीं, सारा संसार ही लोभियां ने शमशान घाट बना के रख दिता है, और खुद बैठा है धानक दी तरह, कोई मरे मैनू कुछ मिले, कोई तबाह होवे मैनू कुछ मिले, मैनू कुछ मिलना चाहिदा है, हुंदा है दूजा तबाह ते होवे, मेरे पल्ले कुछ पैना चाहिदा है, खोया जांदा सब दा ते खोया जान दे। इस तरह हर मनुख धानक बन गया, और हर मनुख ने संसार नू शमशान घाट बना के रख दिता। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसनू इस ढंग नाल भी बयान किया है, एक स्वान दोए स्वानी नाल, भलके भौंके सदा बयान। एक कुत्ता, दो कुतियां, मनुख जैसे सवेरे उठता है, इहदे नाल उठ बैठदियां ने,
भौंकदा है कुत्ता, भौंकदियां ने एक कुतियां। रात नू जद सौ जांदा है वक्ती तौर ते एक कुत्ता ते कुतियां शांत होंदियां ने, पर होंदियां इस दे कोल ने। जैसे सवेरे उठदा है कुत्ता भी उठ बैठा, कुतियां भी उठ बैठियां, जोर दा भौंकना आरंभ कर दिता। इस भौंकण विच मनुख इतना बेजार होता है, मजाल एदी जबान तो वाहिगुरु निकले, राम निकले, अल्लाह निकले, मजाल ए जपजी साहब पढ़े, ये मंदिर दी सुरत लवे गीता पढ़े, या ये नमाज पढ़े ते कुरान दी तलावत करे, नहीं, मुश्किल है। कौन है कुत्ता? लोभ। कौन ने दो कुतियां? आशा ते तृष्णा। थोड़ा जिया लोभ कुत्ता चुप होंदा है, आशा ते तृष्णा, तृष्णा जो मिल गया उसकी तृप्ति नहीं, तृष्णा ते आशा, ये दोवें इतनिया जोर दियां भौंकदियां ने कि वक्ती तौर ते चुप कीते उस कुत्ते नू, उस लोभ नू नाल भौंकना पैंदा है, और पूरी उच्ची आवाज दे भौंकना पैंदा है। तो जब लोभ ऐसा भौंकना शुरू करे, आशा ते तृष्णा भी भौंकण, ये कल्ला मनुख की करे, ये फिर की करदा है? धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, कूड़ छोरा मुठा मुरदार, झूठ दे छुरे नाल मुरदार नू जबा करदा है। मुरदार और झूठ दा छुरा, प्रथम ते समझांगे, जानना चाहांगे मुरदार की है। मुरदार गुरु नानक खुलासा कर देन, बाणी दी व्याख्या बाणी कर दिए, हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, गुरु पीर हमाता भरे जा मुरदार न खाए। पराया हक बस यही मुरदार है, अगर हिंदू है तो गऊ खा रहा है और मुर्दा गऊ, मुस्लिम है तो सूअर खा रहा है मुर्दा सूअर, मरिया होया सूअर। पराया हक इते सूअर खा रहा है मुसलमान, इते गऊ खा रहा है हिंदू। भारत दी मनोहत गऊ सब तो उत्तम है, ये मनुखी मां दी तरह सोचती है। इसका गर्भकाल का समा भी मनुखी मां दी तरह 10 महीने का है। जैसे डार्विन ने किसे वक्त कहा कि मनुख दी आखिरी कड़ी बंदर है, बंदर तो विकास करके मनुख इस शक्ल दे आया है। शरीर की खोज है, विज्ञान की खोज, बाहर की खोज है, पर भारत का ऋषि मन की खोज दे संलग्न है। उदी दिलचस्पी मन की खोज दे है। उन्हें देखिया मनुख का मन ते गऊ का मन बड़े निकटवर्ती ने, जैसे डार्विन ने देखिया बंदर का शरीर ते मनुख का शरीर बड़ा मेल खाता है। भारत दे ऋषि ने देखिया गऊ दा मन ते मनुख दा मन बड़े निकटवर्ती ने। हो ना होवे मनुख दी आखरी कड़ी गऊ है, गऊ मरिए तो फिर मनुख बनिए। इस तरह मनुखी जिंदगी दी आखरी कड़ी गऊ हो सकती है, बकोले डार्विन बंदर हो सकती है।
افضل ہو گئی گو، مہان ہو گئی گو، بھارت دے چنتن دے، دیش واسیاں دے چنتن دے، کیونکہ منکھ دی طرح سوچ دیئے، منکھ دی طرح ممتا رکھ دیئے، منکھ دی طرح دکھ سکھ محسوس کر دیئے۔ اس نو مارنا ایسا ہے جیسے منکھ نو مارنا، اور اس دا ماس کھانا ایسا ہے جیسے بندے دا ماس کھانا۔ ترگت جون ہے، سور بشٹا کھاندا ہے، گندگی کھاندا ہے۔ تو اسلام دیوانی محمد صاحب نے حرام قرار دیتا نہیں کھانا، یہ سور نہیں کھانا، کہ دن بھر بشٹا کھاندا ہے، گندگی کھاندا ہے، اور پھر اس دی گردن دی ہڈی اتنی مضبوط اتنی سخت، یہ حلال نہیں ہو سکتا، ذبح نہیں ہو سکتا، بہت تڑپے گا، بہت تڑپے گا، کھانا حرام۔ پر مہاراج کہہ رہے ہیں کھا رہے ہیں، وہ سور اگر وہ مسلمان ہے کھا رہے ہیں، وہ سور اگر وہ بیگانہ حق کھا رہے ہیں، اگر بھارت دا واسی ہے ہندو بودھ جین سکھ ہے، پرایا حق کھا رہے ہیں، گو کھا رہے ہیں۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دے واک، حق پرایا نانکا اس سور اس گائے، گر پیر ہما تاں بھرے جامردار نہ کھائے۔ پر جب لوب کتا بھونکدا ہے، آسا تے ترشنا دو کتیاں بھونک دیاں نے، اس بھونکن وچ منک ایسا نڈھال ہوندا ہے، بے حال ہوندا ہے، کوڑ چھورا مٹھا مرداں، بھلکے بھونکے صدا بیا، یہ آسا ترشنا بھونک دیاں نے، بے حال کر دیندیاں نے۔ یہ لوب کتا بھونکدا ہے، نڈھال کر کے رکھ دیندا ہے، ایک سوان دوئے سوانی نال پلکے بھونکیں صدا بیال، کوڑ چھرا مٹھا مردار، تانک روپ رہا کردار۔ پھر یہ بے حال ہویا منک جھوٹ بول کے پرائے حق نو اپنا ثابت کرن دی کوشش کردا ہے، میرا ہے میرا ہے، جھوٹ بولدا ہے جد اس دا نہیں ہے، یہ زمین میری ہے جدکہ اس دی نہیں ہے، یہ گھر میرا ہے جدکہ اس دا نہیں ہے، یہ دھن میرا ہے، یہ سمپدا میری ہے، اے ملکیت میری ہے۔ اس طرح دوجیاں دا کھوندا ہے، دوجیاں دی چیز دیتے وستو دیتے اپنی مور لاندا ہے، بےحال ہویا تے بےحال کیتا ہے، لوب نے بےحال کیتا ہے، آسا تے ترشنا نے۔ اس واسطے میرے پادشاہ کہندے نے لوبھی دا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ لوبھی پاپی ہوندا ہے، لوبھی تو ہر وقت خطرہ ہے، دھن نو سمپدا نو زمین جائیداد نو۔ اور چونکہ ویاپک پدر تے لوگ پردھان ہو گئے، خلقت لوبھی ہو گئی ہے، تو ایک دوجے تو خطرے ود گئے نے، چھینا جھپٹیاں ود گئی نے، لوگ پردھان۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے تے بڑا سندر آسا دیوار دے بھی فرمان کیتا ہے، جیسے راجنیتک دنیا کرانتیاں ہوندیاں نے، راج پاٹ تے بدل دیاں، نیتیاں بدل دیاں نے، ودھان بدل دے نے، کئی دفعہ کرنسی بدل دی ہے، دھن دا پرچلن بدلدا ہے، روپ رنگ بدلدا ہے، باہر دا اے پلٹا راج پلٹے نال ہوندا ہے، لیکن منک تے انتش کرن دی دنیا ہے، من دی دنیا، اس دے اتے اگر اہنکار راج کرے
तो नीति विच व्यवहार विच जुलम बर्बाद हो जाता है। अहंकार का मतलब मैं हां तू नहीं है, अहं। अहंकारी किसी नूं भी बराबरी नहीं देगा। अहंकारी हर एक नूं पैरां दे थले रखेगा। तो जो पैरां दे थले आण नूं राजी नहीं, उसकी गर्दन कुचली जाएगी, लिताड़ी जाएगी, आखिर पैरां दे थले लियांदी जाएगी। और जब बहुगिणती विच मनुखता अहंकारी हो जाए, जोरावर हो जाए, तो कमजोर दा सिर शक्तिशाली दे पैरां दे थले हुंदा है, अहंकारी दे पैरां दे थले हुंदा है। चारों पासे जुलम छा जांदा है। ऐसे दौर कई दफा लंघे ने जद सदा हंकारियां कोल ते हंकारी दा पैर गरीबां मजलूमां कमजोरां दे सिर ते उड़ाइयां गईयां गर्दना, लिताड़ियां गईयां गर्दना। जद मन दी सेजा दुते काम दा राज होवे, वासना दा राज होवे, और बहुगिणती विच मनुखता इस तरह दी हो जाए, तो दुराचार आम हो जांदा है, सरे आम हो जांदा है। किसे मुल्क विच अहंकार प्रधान होवेगा, जुलम ही जुलम होवेगा। किसे मुल्क विच वासना एकाम प्रधान होवेगा, तो दुराचार आम होवेगा सड़कां ते, और सरेआम बाग बगीचियां। किसे वक्त भारत विच काम प्रधान मनुखता हो गई सी, रहिंदे ते पंजे विषय मनुख दे कोल हर वक्त ने, पर एक हर वक्त प्रधान होंदा है, वो कोई भी हो सकता है। अहंकार हो सकता है, लोभ हो सकता है, काम हो सकता है। और जब काम प्रधान मनुखता हो जाती है, तो बाजारां च दुराचार और दुराचार दे बाजार, परिवार विच दुराचार, उत्थे भी कोई शर्म हया नहीं रह जाएगी। और धार्मिक मंदरां विच दुराचार, जिस दौर विच काम प्रधान हो गया सी भारत विच, उसे दौर विच कोणारक दे मंदर बने, खजुराहे दे मंदर बने, और इस तरह दे होर मंदर बने। ये सारे मंदर राम दे मंदर नहीं, काम दे मंदर ने। वासना दियां नगन मूर्तियां और वासना दे कृत रूप पत्थरां दियां गड़ियां हुईयां मूर्तियां च देखण लई देश विदेश तो दुनिया पहुंचदी है कोणारक खजुराहा। बहुत वड्डी भीड़। ए वासना उस समय प्रदर्शित हुई सी, सरेआम हुई सी, नुमाइशी बन गई सी बाजार विच। बाजार ते की धर्म मंदरां विच, मंदर ही काम दे बने। और वाकई जद वासना ही प्रधान होवे, तो फिर हर पासे दुराचार छा जाएगा, वो काबले कबूल हो जाएगा, कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं। और ऐसी ऐसी क्रीड़ा होंदी रही इन्हां धार्मिक मंदरां विच, जिन्हों अल्फाजां विच अज दे समय बयान करना औखा है, जिन्हों सुनना सुनाना भी कठिन है। पर जे किधरे लोभ प्रधान होवे, बहुगिणती दे चोवे, ताकत दे चोवे, तो पाप व्यापक हो जांदा है, छा जांदा है। पाप चारों पासे, बकौले गुरु नानक, अज दे दौर विच मनुखी मन दे ते राज कर रहा है लोभ। लबे पाप दोए राजा मैता, कूड़ हुआ सिकदार, काम नेब सद पुछिए, बह बह करे विचार। लब राजा है, लोभ
ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤਹਾਂ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਪਾਪ, ਲੋਭ ਪਾਪ, ਲੋਭ ਪਾਪ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿੱਖ ਦਾਸ, ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ, ਝੂਠ ਕੂੜ, ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੂਠ, ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਝੂਠੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੋਲ, ਔਰ ਝੂਠ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਲ। ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮਨ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਾ ਦੋ ਦੋ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਨੁਮਾਇਸ਼, ਝੂਠ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਝੂਠ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਦ ਕਦੀ ਲੋਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਾਪ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੂੜ ਚੌਧਰੀ ਕਿਧਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਕਾਮ ਨੇ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ, ਇਸ ਨਾਇਬ ਕਾਮ ਨੂੰ, ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਲੋਭ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਨਾਲ, ਕੂੜ ਨਾਲ, ਕਾਮ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਾਮ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਭੜਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਭਾਏ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੋਭ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਭੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਰਨ ਕਰੋਤ ਅਖਾਦੰ ਖਾਦੰ ਅਸਾਜੰ ਸਾਜ ਸਮਝਿਆ। ਲੋਭੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਭੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਮਲੀਨ ਹੈ।

अजित सूर संग्राम अत बल नाम बहुमर्दने गण गंधर्वे देव मानुखं पशुपंखी विमोहने हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरे ज्ञान दे अथा सागर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां मनुख दे अवगुण इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है ताकि मनुख नूं अपनियां कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा? वो गुणां दा सागर है, मनुख अवगुणां दा सागर है। परमात्मा दे गुण नहीं गिने जांदे, मनुख दे अवगुण भी गिनने औखे ही ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे उंजते अनंत अवगण ने अनंत अवगण ने पर मूल कमजोरियां मूल अवगण मनुख दे पंज ने जिन्हां नूं इस तरह गणित देख लिया जाता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी संस्कृति श्लोक इन्हां पंज कमजोरियां नूं बड़े सोहने ढंग नाल उजागर करके मनुख नूं दर्शाउंदियां ने कि तुम इन्हां अवगुणां नूं गुणा दे जमाना है। सतगुरु मोह तो आरंभ करते हैं। मोह मेरा मोह मेरा जो मेरा है उस नाल पकड़ हो जाती है उसे पकड़ नूं कहिंदे ने मोह। जो मेरा नहीं उस नाल मोह भी नहीं उस नाल पकड़ भी नहीं। जो मेरा है उसनू थोड़ी जी भी चोट लग जाए खराश लग जाए टूट भज जाए तड़प उठती है आत्मा चीख उठता है मनुख। लेकिन जो मेरा नहीं जिस विच पकड़ नहीं जिसका मोह नहीं चाहे कल बर्बाद होंदा अज हो जाए कल मिटदा अज मिट जाए कोई दुख नहीं कोई संताप नहीं। घर विच एक बच्चा मासूम बच्चा बीमार पै गया है सारा घर उदास हो गया है। मोह है पकड़ है मेरा है लेकिन किसी देश विच किसी शहर विच महामारी करके सारा शहर बीमार पिया है कोई आ नहीं निकलती। क्यों? उस नाल मोह नहीं वो मेरा नहीं उस विच पकड़ नहीं। रत्ती जी वस्तु टूट भज जाए नुकसान हो जाए आह निकल जाती है लेकिन बहुत बड़ियां किधरे बर्बादियां हो जान अगर उस विच मोह नहीं वो मेरा नहीं तो कोई आह नहीं निकलती कोई चीख नहीं निकलती
कोई अफसोस नहीं आता। जो मेरा है, जिस विच मोह है, आज नहीं तो कल संबंध टूटेगा। मेरे खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, या जो मेरा है उसके खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। चाहे जो मेरा है वो टूटे या मैं टूट जावा, जिस विच मोह है वो खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जावा, रिश्ता तो टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। बस इसी टूटण का दुख है, इसी टूटण का गम है। जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है उस विच बड़ी भारी पकड़ है, बड़ी भारी पकड़ है। पर कितनी भी पकड़ क्यों ना होवे, हथों ते छुटेगी ये वस्तु, ये हस्ती, जो कुछ भी है, आखिर एक ना एक दिन ते हथों दी पकड़ ढिली होवेगी। जे पकड़ ढिली ना होई तो जिसनु पकड़े है शायद वही मुर्दा हो जाए, वही ढिला हो जाए। आखिर ते संबंध टूटना है। दुख सारा मनुख दे कोल मोह दा है, मेरे दा है। और जितना मनुख मेरा मेरा करदा है उतना ही मोह वध जांदा है, और जितना मोह वध जांदा है उतना ही दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये मोह व्यापक है, किधरे थोड़ा किधरे बहुत, किधरे बहुत ज्यादा है। प्रथम मोह परिवार का, सहजे सहजे जैसे जैसे पता चलता है ये मेरा पिता, बच्चे नू जैसे पता चलता है ये मेरी मां, ये मेरी बहन, ये मेरा भरा, और जितना प्रतीत आंदा है मेरा है मेरा है मेरा है, उतना ही मोह वध जांदा है, उतनी ही पकड़ वध जांदी है। अगां चल के मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी धन संपदा, मेरी कुल, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा स्वप्न, मेरी जिंदगी, मेरे दा पसारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मोह दा फैलाओ जितना वद्दा है, बस मनुख दा दुख भी उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है। मोह ग्रसा प्राणी चैन दी नींद सो नहीं सकता, कारण जिस नाल मोह है, जिस देते मेरे दी मोर लाई है, आखरे मोर मिटती है। जिस ते मोर लाई है वो भी मिटता है, बस इतों ही दुख है, इतों बेचैनी, इतों ही संताप शुरू हो जाते ने। दो चार उदाहरण राही मैं स्पष्ट करने की कोशिश करा। मां बाप का इकलौता बच्चा गालवन 5-6 वरिया का गुम हो गया है, नहीं लभ रहा। मां दियां अखां हर पासे लभदियां ने, पिता दे पैर हर पासे दौड़ रहे ने, दिल हर वक्त याद कर रहा है, अखां छम छम हंजू पियां वगंदियां ने। जीवन बहुत पीड़ा दे बतीत हो रहा है। जो मेरा सी, जिस विच मोह सी, बिछड़ गया। सहजे सहजे विछोड़े दा दुख
सीमा पैदा गया। क्यों कहते हैं समा सब कुछ नु पाट देंदा है, समा जख्मा नु भर देंदा है। बहुत समा लंघ गया, आज 5 साल हो गए उस बच्चे नु गुम होया। अचानक आज किसे ने दर पे दस्तक दिती और उसने आके आख्या, थोड़ा जो बच्चा जो बहुत पहले किधरे गुम होया सी उसनु मैं देखे। जिस हार दी तुसी गल कहंदे सी वो हार उसदे गल दे च है। आके देखो। खैर कुछ हो लिया, हार रंग रूप मेल खांदा वेख के प्यो ने सीने नाल लाया, मां ने अखां विच बिठाया। विछोड़ा मिलाप दे सुख दे च बदलिया, हंजू हासियां दे च बदले, मुरझाना खेड़े दे च बदलिया, दुख सुख दे च तब्दील होया। 5 साल दा विछोड़ा मां ने ममता डुल डुल के डोली, प्यो ने प्यार दे मानो सागर उमड़ा देते। वेख वेख के मां दिया अखां रजदियां नहीं, प्यो दा दिल भरदा नहीं। पालन पोषण इस तरह चल रहा है, दिन लंघ दे गए। बच्चा बहुत खुश, उसनु इतनी ममता मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है। ओ भी खेड़े च, ओ भी खुशी च, मानो बच्चा मिल गया, प्यो नु पुत्र मिल गया, उन्हां दी भी प्रसन्नता। पर अज किसे होर ने आके द्वार ते दस्तक दित्ती, आख्या जिस बच्चे नु तुसी ले आयो ये थोड़ा नहीं, थोड़ा बच्चा ते मैं वेख्या है, वो होर है। इस बच्चे ने उसे ही बच्चे दे गल चो हार उतार के आप पाया है, आओ थानू दिखाइए। जद जाके मां ने वेख्या, प्यो ने वेख्या, हुलिया बहुत नेड़े मेल खांदा सी, आवाज मेल खांदी सी, चाल ढाल मेल खांदी सी। मां ने सीने चलाया, प्यो ने उंगल पकड़ी उस बच्चे दी, कर लिया है। नजरां जिस हुण लैंदे बच्चे ते टिकियां, पहले लैंदे तो नजरां फिर गईयां। हुण अखां विच ते उस लई था नहीं सी, घर विच भी उस लई मानो था नहीं सी। धारा मोह दी बदल गई, दूसरे बच्चे ते टिक गई। सारा प्रेम सारी ममता मां ते पिता दी इस नवे लैंदे बच्चे देते डुलन लग पी। पहला मायूस रहन लग पया, दुखी रहन लग पया, जैसे बूटे नु पानी ना दे कुमलान लग पैंदा है। मासूम बच्चा ममता तो वांझा रह गया, प्यार तो वांझा रह गया, सत्कार तो वांझा रह गया, कुमलान लग पया। दूजा खिड़न लग पया, वधन लग पया, प्रफुल्लित होण लग पया। पहला लेंदा हुआ बच्चा इतना कुमला गया, इतना मुरझा गया,

से पुत्र नु वर्तना चाहिए, नहीं वर्त सकते। जैसे पति नु आखी है या पत्नी नु कुछ कही है, लाजमी नहीं कि दोवे एक दूसरे की मनन। किसी थां ते नौकर भी इनकारी हो सकता है। तो इस शरीर मनुख दा मोह धन नाल बहुत ज्यादा हो गया, पदार्थां नाल ज्यादा हो गया, और सहजे सहजे हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, पदार्थ की खातर, धन की खातर, संपदा की खातर भरा कुर्बान किया जा सकता है, मां बाप छोड़े जा सकते हैं, पुत्र तो भी मोह मोड़िया जा सकता है, और पत्नी ते पति दे विचकार दियां तलखियां पैदा हो सकदियां, खलीज पैदा हो सकती है, दीवारां खड़ियां हो सकदियां, और जद भी इन्हां रिश्तियां दे दराड़ देखो, दीवार देखो, दूरियां देखो, तो बहुगिणती दे कारण धन होवेगा। धन दी पकड़ ज्यादा, धन नाल मोह ज्यादा, और इतना ज्यादा इस देश देखते हैं धन की पूजा होती है। सब तो वड्डा त्योहार दिवाली, ते दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजन, धन की पूजा। कोई इस ढंग नाल अपने मां की पूजा नहीं करता, पिता की पूजा नहीं करता, पुत्रां की पूजा नहीं करता, पत्नी की पूजा नहीं करता, पति की पूजा नहीं करती पत्नी, लेकिन सारे मिलके धन की पूजा। तो अचेतन मन विच धन की पकड़ बहुत ज्यादा हो गई, और मूल कारण धन नु जैसा वरती है धन ना नहीं करता, धन नु जिथे रखी है, और जो इसका इस्तेमाल करिए धन कोई हील हुज्जत नहीं करता। तो इस सदी रेचते ये पगड़ शिखर पाते है, बड़ी प्रबल है, इस तो थले है परिवार की पकड़, कुल की पकड़, मान मर्यादा की पकड़, और फिर अपने तन की पकड़, अपने रूप की पकड़, अपने जोबन की पकड़। मोह का एक बहुत वड्डा विस्तार है, और ऐसा जापदा है जैसे मोह नु नापना औखा है, इस वास्ते मनुख दे दुखां नु भी नापना बड़ा औखा है। तदी ते धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हे मोह तू बहुत बलवान है, हे मोह तू बहुत शक्तिशाली है, तू अपनी जाल सारिया ते पाई हुई है, तू सारिया नु अपनी जाल दे फसा के रखे हुआ है। मोह नु घूमण घेड़ी भी कहते ने, सियाने लोग जानते ने, खास करके दरियावां दे कंडे ते रहण वाले, जिथे पानी घूम रहा होवे लाजमी उत्थे खड्डा हुंदा है, चारों पासे दा पानी उसनु भरण लई दौड़दा है, और जैसे उस खड्डे नु पानी भरण लई दौड़दा है पानी दा घेरा बन जांदा है, वह घूमण लग पैंदा है, उसे नु कहिंदे ने घूमण घेरी। सियाने तैराक भी जानते ने, अगर कोई उस घूमण घेरी च फस के है निकल नहीं सकता। हां उदों निकलता है जब शरीर दे चों प्राण निकल जाते हैं। जीव का मनुख जितना संघर्ष करता है निकलण का, उतने ही उस घेरी च फसता है, उतने ही डुबदा है, उतने ही गोते खांदा है, और जितना संघर्ष करता है उतने ही प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं, और जब सारे निकल जाते हैं प्राण तो यह भी घूमण घेरी चों निकलता है। परिवार का मोह, धन का मोह, संपदा का मोह, जीवन का मोह, मान मर्यादा का मोह, ऐसी घूमण घेरी है, एक दफा जन्म दे लेके जब मनुख फसदा है
तो मरण तो बाद भी उस घुम्मण घेरी चो निकलता है। और एक गल वखरी है, एक घुम्मण घेरी चो निकलिया है फिर जन्म आना है, फिर घुम्मण घेरी, फिर जन्म आना है, फिर घुम्मण घेरी। इस तरह अनंत जन्म घुम्मण घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घुम्मण घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घुम्मण घेरी च फसदा है और मरदा है। इस तरह अनंत जन्म दुखां दे बतीत होंदे ने। अनंत जन्मां दा संताप मनुख दे कोल जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है। ठीक आख्या है, मोह घुम्मण घेरी है, मोह चक्र वांको नीर जारे वांको सीर है। भर्तरी ने ठीक आख्या है, मोह ऐसी घुम्मण घेरी है, इसी ची मनुख फस के रह जांदा है, इसी ची मनुख तड़प के रह जांदा है। और निकलना जींदे जी उस लई औखा हो जांदा है, कठिन हो जांदा है। लिहाजा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मोह नूं जो पहल दिती है, इत्थों ही मनुख दियां मूल कमजोरियां दा जिक्र करना आरंभ कर देने हैं। ये ठीक ही है, वाकई यही एक ऐसा चक्कर है, यही एक ऐसा घेरा है जिस विच फसदा है मनुख, निकलना कठिन हो जाता है। 80-90 साल का भी मनुख हो जाए, 100 साल का भी मनुख हो जाए, जीवन का मोह, संबंधियां का मोह, धन संपदा का मोह छोड़ता नहीं, मनुख होर जो है फसता है। जद कदी ऐसी विचार चले तो मैंने एक और बिरध माता चेते आउंदी है, गालबन 90 साल दी, कुबड़ा शरीर, हड्डियां दा ढांचा, बड़ी मुश्किल नाल मेरे कोल चल के आई, हाथ जोड़ के कहन लगी, ज्ञानी जी मेरे लिए अरदास करो। तो मैं सोची पै गया, भया पुराना चोला, चोला पुराना हो गया जिंदगी दा, यही आखती होवेगी परमात्मा संभाल लवे। तो मैं आख्या दसो मां की अरदास करनी है। कहन लगी ओ सामने मेरा पड़पोता खेड़ रहा है, बस इसका व्याह वेख के मरा, अरदास करो। मैं आख्या नहीं मां, ये अरदास नहीं हो सकती, तू अपना व्याह वेखिया नहीं रजी, पुत्रां दा व्याह वेखिया नहीं रजी, पोतरियां दा व्याह वेखिया नहीं तृप्त होई, तो याद रख पड़पोतरे दा व्याह वेख के भी नहीं रजेंगी। ते मोह दा घेरा होर वड्डा हुंदा जाएगा, होर वड्डा हुंदा जाएगा, और मरण तो पहले ये घेरा टुटदा ही नहीं। धन ने और मनुख जो मौत तो पहले, प्राणा दे निकलण तो पहले मोह दे घेरे विचों निकल जाते ने, बड़े सूरबीर ने, मोह नू जित लिया है, मेरे नू जित लिया है, और जो मेरे नू जित लेंदा है, मोह नू जित लेंदा है, प्रभु उसनू गलवकड़ी च लांदा है और वो जीवन की बाजी वाकई जित लेंदा है, अपनी जिंदगी वाकई सफल कर लेंदा है।

अत बलना बहु मर्दने। हे अजित, हे संग्राम दे सूरमे, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। कीड़िया कीड़िया नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं। गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने। बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर विचारक देवते मानुक चंगे चंगे मनुख स्याणे मनुख गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने। फिर ऐ मो तेरी लपेट दे पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समूह ब्रह्मंड ऐ मो तू अपनी गिरफ्त च लै लिया, तू अपनी पकड़ दे च लै लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नूं भी सीने नाल लाई फिरदी है। सियाणे कहिंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां का ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पे, तां वी बंदरी बच्चे नूं छोड़दी नहीं, सुटदी नहीं। जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा कुखारी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आता, नहीं छोड़ती। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं दिव्य शक्ति रखण वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर गण गंधर्व संगीतकार सारे इसकी लपेट दे चले, सारियां दा मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए? फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति च इन फरमान कर देने,

ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਮਸਕਾਰਮ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਔਰ ਆਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਬਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਬਦਬੋ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਮੋਹ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਦਇਆ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਇਆ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣਾ ਕਰੋਧ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਸੀਮਤ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਅਕਬਰ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਦਰਾਂ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਘਰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲੀਮ ਗੋਦ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਖਾਦਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਸਲੀਮ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੀ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ,
सब तो सुंदर है। खादमा, मैं ऐसा सोच रहे हैं, खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसे नु भी नहीं बनाया। हाथ जोड़ के खादमा कहन लगी, जहां पना ये हो ही नहीं सकता कि सलीम तो ज्यादा कोई खूबसूरत हो गए, वो किस तरह हो सकता है। खुश होके प्रसन्न होके पंज मोरां खादमा दी हथेली ते टिकाइया। आखे खादमा तू ये काम छोड़, जा आगरे विच, जा आगरे शहर विच, लब कोई ऐसा बच्चा जो सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैं तेनों भी माला माल कर देंगा, बच्चे दे मां बाप नूं भी माला माल कर देंगा, दोहां दियां झोलियां भर देंगा। और मैं जानना चाहना कोई सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर मोहदा मारिया ये अकबर अपनी खादमा दे नाल इस तरह दियां गल्लां कर रहे हैं और कह रहे हैं, जा लब के लिया हुक्म मन खादमा चल पई। सवेर दी गई, दिन ढलदियां वापस आ रही है दबे हुए पैरां नाल, तरह तरह दी विचारां दी डुबी हुई गोद विच एक बच्चा लिया होया। सिद्धी अकबर दे पास आई, देख के अकबर खुश होया है, कोई बच्चा लियाई है इसकी गोद विच है। खादमा तू लियाई है ऐसा कोई बच्चा जो सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? हां जहां पना मैं ले आई हूं। अकबर ने चद्दर एक पासे की थी, चीथड़ियां दे च लिपटिया होया एक करूप और मैला बच्चा खादमा दी गोद दे च है। हैरान होके अकबर कहिंदा है, ए बच्चा किसना बच्चा है? जहां पना ये मेरा ही बच्चा है, मैं सारा आगरा शहर गांव आ रहा है, जहां पना इस बच्चे तो मैनू ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिसया। सच पूछें और मेरे जान दी बख्शी करें, ऐ जहां पना तेरा सलीम भी इसके सामने पिक कर है। कहिंदे ने नौकरानी दे इना बोला ने अकबर दियां अखां खोलियां। ख्याल आया मैं मोदी नजर नाल सलीम नु वेख रहा, ये मोदी नजर नाल अपने बच्चे नु वेख रही है। मोह करके सारे जहान नालों इस नौकरानी नु अपना बच्चा खूबसूरत दिखाई दे रहा है और मोह करके मैनू सलीम सब नालों सुंदर दिखाई दे रहा है। सियाणा सी आलम फाजला नू अपनी सभा विच रखदा सी, एकदम गल समझ दे चा गई, पकड़ दे चा गई। और ये असी रोजमर्रा दी जिंदगी विच देखदे आ, मनुख नू अपने औगणा नाल भी मोह हो जांदा है, किसी दे गुण भी उसनू चंगे नहीं लगते। अपना करोप बच्चा भी महान है, यूसुफ है, लेकिन पड़ोसी का सुंदर बच्चा भी करोप है, बेमैनी है। तो स्वप्न उजागर करता है मोह, और यह स्वप्न बनावटी होता है, वक्ती होता है, आरजी होता है, और मनुख इसी चीज फसया रहता है। कदी कदाई कोई मनुख
प्रभुदी शरण प्रकट, प्रभुदा चिंतन कर, नाम दे गीत गांदिया गांदिया, मऊ दे पर्दे नूं परे सुटदा है, निर्मोह हो जांदा है। निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है, मोह ग्रसे लई केवल उसका परिवार और उसके चों भी कुछ सदस्य उसके अपने ने, बाकी तो सारे का सारा पराया। इतना वड्डा जगत ते वो परा होवे, पराया होवे, तो फिर ते मनुख भय विच जीवेगा, डर विच जीवेगा, दुख विच जीवेगा। इस वास्ते मोह ग्रसिया दुख विच ते भय विच जीवदा है। सारा जगत अपना है प्रेमी लई, सारा संसार अपना है, तो निर्भय होके विचरदा है, आनंद नाल विचरदा है, सुख नाल रमण करदा है। सब जो अपने ने मोह दी सीमा होंदी है, निर्मोही असीम होंदा है। निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है, मोह ग्रसे लई केवल परिवार ही उसका जो है अपना है। बहुत छोटी दुनिया होंदी है मोह ग्रसे दी, जिसकी दुनिया छोटी उसकी अकल छोटी, उसकी सोचनी छोटी, उसकी समझ छोटी, उसका सब कुछ छोटा। बहुत छोटे तल ते जीवदा है मोह ग्रसिया मनुख, और असीम तल ते जीवदा है निर्मोही। कोई सीमा नहीं परमात्मा की, कोई सीमा नहीं निर्मोही की, कोई सीमा नहीं। साढ़े देश दे एक ऐसा भी पुरुष होया है, राजा सी, स्वभाव किधरे मां बाप ने जन्म समय उसका ना रखे सी निर्मोह, और वड्डा होके भी यही नाम पर चल रहा निर्मोह, राजा निर्मोह। इतिहासिक वार्ता है, एक ऋषि ने जब यह नाम सुने राजा निर्मोह, हो नहीं सकता, कठिन है, औखी गल है, तो परीक्षा लई चल पिया निर्मोह दे महलां दी तरफ। जैसे महलां विच दाखल होया है, राजे निर्मोह दी पटराणी मिली, और इस ऋषि ने पूरा तौर तरीका पहले बनाया हुआ सी कि मैं स्पष्ट करना है तू मोह ग्रसे है निर्मोही नहीं। राजे निर्मोह का लड़का इधरे ऋषि की कुटिया च आया सी, और ऋषि ने उस बच्चे नु बिठा दिता, आखिया जिन्ने चिर तक मैं ना आवा तू बैठी, मैं थोड़ी देर दे चावना। राणी नु ऋषि कहिंदा है, राणी तुमको अति विभक्त सुत खायो मृगराज, हमने भोजन ना कियो तिस मित्र के काज। हे राजमाता, थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया, मैं ते भोजन छड़ के दौड़े हां थानू ए खबर सुनाने वास्ते। पर ए राणी, राजे निर्मोह दी राणी, उस असीम मनुख दी संगत च रह रह के उस असीम मनुख की पत्नी भी निर्मोही हो गई सी, मोह तो उच्ची हो गई सी। ऋषि नु कहन लगी, पेड एक साखा घनी पंखी बैठे आए, ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ देश देश जाए। पेड एक साखा घनी पंखी बैठे आए, ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ दे दिस जाए। संसार एक वृक्ष दी तरह है, कई इस दियां शाखा ने, कई मुल्क ने, कई इलाके ने,
और संस्कारा वे प्रारब्ध वसो के संजोग वसो के इना परिवारां दियां टहणियां ते आके पंछी बैठते ने। मन दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड उड के अपनी दिशा नूं चले जांदे ने। ऋषि ये कोई नवी खबर ते तू नहीं लेके आया, लेकिन रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु दी लीला है। ऋषि दंग रह गया है। तप साधना करदिया करदिया थक गए, परिवार दे मोह दी दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह दा पर्दा अजे भी बाकी है, जीवन दे मोह दी पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचता है चलो उस नाल ते गल करिए जिसका ना ही राजा निर्मोह है, उनू तो वेखिए गया। राजसभा ऋषि दाखल होया, आहो भगत की थी, दंडौत की थी, राजे ने सन्मान दिता, बिठाया, आन का कारण पूछया, ऋषि राज किस तरह पधारे, साढ़े इस घर नू किस तरह भाग लाए, इस राजसभा नू आके पवित्र कीता, आहो भाग साढ़े, कोई सेवा होवे ते दसो। ऋषि कहिंदा राजन बहुत दुख, बहुत संताप, बहुत माड़ी खबर। राजन दसन लगे हैं, मेरी जबान लड़खड़ांदी है, पर मजबूर हां दसन देवी। मुस्कुरांदे हुए चेहरे नाल राजा निर्मोह कहिंदा है, दसोरा राज ऋषि, संत जन दसो। खड़ा होया ऋषि ते कहिंदा है, राजन तुमको अति विपत पल पल घड़ी घड़ी

हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें, होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हाथ जोड़ के कहता है, नाम का अजीत हूं जीता न जाऊंगा, जीता गया तो हार के जीता न आऊंगा। स्वयं श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने अपनी अखां दे सामने शहादत दा जाम पींदे आया, दोवें लखते जिगरां नूं देखदे ने, शुक्र करदे ने परमात्मा दा, ईश्वर दा, अकाल पुरख दा, असीम प्रेम दी दुनिया च जीण वाले धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, ना ताज दा मो, ना तहत दा मो, ना परिवार दा मो, ना संसार दा मो, केवल प्रेम अकाल पुरख दा, प्रभु चिंतन दे नाल, उस दी याद दे नाल मोह प्रेम बन जांदा है, और प्रेम ईश्वर दा रूप है। जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति, और आपदा मूल फरमान साच कहो, सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, मोह सीमित है प्रेम असीम है, संसार दी सीमा है मोह ग्रसे दी भी सीमा है, निरंकार असीम है प्रेमी असीम है। जैसे कोई त्रह त्रह प्रभु दी शरण विच जांदा है, आसरा पकड़दा है, अरजोई करता है, अरदास करता है, और उसकी याद दिच डुबदा है, मोह प्रेम बन जाता है, फिर कुछ भी चला जाए, कुछ भी आ गया, ना हरक ना सोग, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम।

धन के थे, उस दे वसाहल नाली सब कुछ प्राप्त होंदा है, और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उस दी देन है, ये दिमाग उस दी देन है, और ये तन ते मन दे आसरे ते तू धन कठा कर लिया, तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है, पर धन दा अहंकार सता प्रभता इसका अहंकार अगां चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिदा है, दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठन लई बनाईदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, और गुणा दे आसरे ते बैठ के ये प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो मान मिलता है, वो मान इस दे अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखने दे चाया है धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है, हुण त्याग दा अहंकार सता कोल है, सता दा अहंकार सता दा त्याग कर देता है, हुण त्याग दा अहंकार ऐसा अक्सर देखण नूं मिलदा है। पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग का अहंकार, अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है, और अहंकार तो बचना औखा। जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नू बिठाण लई बनाने हां, अहंकार बैठ जांदा है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा है। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही, रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इसते भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत आउंदे ने, अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है, और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचता है उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है, मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार, दावा कीता सी हरनाकश ने, मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा, दावा कीता सी नमरूद ने, मैं हां खुदा, कौन होंदा है खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं, इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर, और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं, सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है, और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दियां निगाहां दा मरकज बन जावां, केंद्र बन जावां, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके, और हर एक दा माण मैं हो जावां, मेरे ते माण करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़

0: अहंकार दिए। इंज कह लईए यात्रावां ते दोई ने, अहंकार दी यात्रा निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ आउंदी है तू है तू है तू है तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ आउंदी है मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां, ये जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है तू है तू है, ये जन्म मरण नू मिटा के प्रभु का रूप बना देंदी है। बूंद सागर दे चलीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते ने तू तू करता तू भया मुझ में रहा न जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू तू है तू है तू है। इस बिरती ने इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछानी। तू है तू है तू है, इसने भगवान का रूप बना देता। मैं हां मैं हां मैं हां, ये शैतान का रूप बना देता है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसते रोम रोम देच, जिस दिया सारिया क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रगट हो रहे है। श्री रविदास सही कह रहे ने, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही। जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं। ये तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान, हौमें नावें नाल विरोध है दोए न वसे इक ठाए। ये मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां मैं हां, उदी सारी भज दौड़ उदी सारी क्रिया उदी सारी तपस्या उदी सारी मेहनत, ये किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा संत दा सब कुछ तू आश्रित है, तू ही है तू ही है तू ही है। उथे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी जिस विच गुण भस्म हो जांदे ने, बस तू ही तू ही तू ही। एक आलम दा कहना है अज राह चनार अज राह चुनार कि सलामत न कुनत, इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकड़ के ना चल। बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत देच इस ढंग नाल रहे कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश ना खुआनद ओ इमामद न कुनद, जे किधरे इबादत करनू तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना होवे कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़दियां मस्जिद दे भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरों दे भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने, ते प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिसका मिट गया है सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभमान, जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया है, मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनदा है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे च भी जो है था ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठन दी कोशिश करदा है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही हुंदे ने। सारी राजनीति सारी सता अहंकार आश्रित है, और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठदा है, कई दफा सिर हिल जांदे ने ते थल्ले गिरदा है। इस वास्ते कहंदे ना गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगां दे सिर झुकाना चाहंदा है, एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जांदा है, अहंकारी शर्मसार होके रह जांदा है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नू तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है, ये धार्मिक साधना नू भी अपना सिंघासन बैठा बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जांदा है।
1: तीरथे बरते अरदान कर।

ते ज्यों कुंचर इसनान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जांदी है। हे जनम मरण मूलं अहंकारं पापात्मां मित्रं तजन्त सतरं दृणन्त अनेक माया विस्थिरने। एह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने दी तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा है, अहंकारी हां नहीं कर सकदा। जित सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहण दी सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतना ही जबान ते आ जांदा है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हां कहना ही भुल गए। हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दित्ती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला दई है ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बनती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रंग तजंत सतरंग दृणंत अनेक माया विस्तीर ने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्थार होंदा है, इसके दुश्मन ही वधदे ने। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहिंदे ने,

आरद निहाले दुश्मनी बरकुन किरंजो बेशुमार आरद। दोस्ती दा बूटाला मिलाप दा बूटाला जितो खुदा दा मिलाप चाहना है जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा लावी बैठा है इसनु आज ही जड़ों पुट दे सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नु होर कुछ भी नहीं लगदा। अमृत फल खाना चाहना है दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नु मित्र बना लेंदा है। सबको मीत हम आपन की ना हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नु उसने मित्र बना लिया पशु पक्षियां तक नु जड़ चेतन सबनु अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है दुनिया बड़ी वड्डी है सारिया नु मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल। गुरबाणी ढंग दसती है एक सज्जन सब सजना एक वैरी सब बात। जद उस एक नु सज्जन बना लैंदा है ते एक नाल सजनता दा जद रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जांदी है। जीवन धन हो जांदा है। कहिंदे मित्रां दे च जीवना स्वर्ग दे च जीवना है दुश्मनां दे च जीना नरक दे च जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओ जो कहिंदे गलियां दे कख भी वैरी ने पर स्वर्ग दे च ओ ने जिन्हां ने शैतान नूं भी मित्र बना लिया है दुष्टां नूं भी मित्र बना लिया है। सब मित्र सबको मीत हम आपने कीना पर ए युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदी। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं अगर उदारमक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है। एक संत बैरागी जंगल दे च कुटिया बना साधना दे च लीन है ते साधना सारी सिर्फ अहंकार नु मारन वास्ते है और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रगट होंदा है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलदा है और जैसे निरंकार प्रगट होंदा है जन्म मरण मिट जांदा है। सरा साधना दे च लीन ए योगी ए संत। एक राजा आया दर्शना लई तपस्या साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई। बहुत तपेश्वर है बहुत जपेश्वर है बड़ा संजमी है। राजा दर्शना लई आया है दर्शन कर राजा प्रसन्न होया है। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़त पोशाक चोला भेंट कीता। भावे साधु कहन लगा हुण असी इस तरह दे चोले पहनना छड़ दिता है असी ते तन दिते सिर्फ कमली धारण कर दे। पर वो राजा कहन लगा आखिर मैं खाली हथ किस तरह जो है आप दे दर्शन करा ये नजराना है ये भेंट है चलो नहीं पाना आप रख लो दे देना किसे नू। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिना बाद इस त्यागी वैरागी साधु दा एक मित्र गूढ़ा मित्र बचपन दा दोस्त और ओ भी साधु सी ओ भी तपस्या कर रहा सी मिलन ले आया है। लालबन 10 मील दी वाट पैदल चल के ये जंगल विच संत दी कुटिया कोल पहुंचे है।
ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਇਸ ਸੰਤ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛਕਾਇਆ। ਰਾਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖੇ ਇਹ ਪਾ ਲਓ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਚੱਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੁਝ ਬੇਨਿਆਸ, ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਧੂ ਔਰ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਸਾਧੂ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਮਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਨੁੱਖ, ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਉਹ ਚੋਲਾ, ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ। ਜੈਸੇ ਦੋਵੇਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਸ ਚੋਲੇ ਤੇ ਔਰ ਚੋਲਾ ਜਿਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਉਸ ਤੇ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਦ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ। ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗਏ, ਆਓ ਭਗਤ ਹੋਈ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜੋ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਫਾੜ ਫਾੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਬਿਖਰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਸ ਬਿਸਮਾਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੋ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਫੜੇ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ? ਦੁਖਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕੱਲ ਆਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਹੰਕਾਰ ਉਬਲ ਪਿਆ, ਬੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਚੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਦ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ, ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਚੋਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਈਦਾ? ਖੈਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਗਏ।
दूसरे घर वालों की भी निगाह इस साधु ते अखां विच रमज है, बिस्मात है, चेहरे ते शांति है। और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे ने, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला, तो दूसरे घर वालों ने भी यही पूछे, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन दे दोस्त ने, बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या कर देने ज्ञानी ने, रह गई इस चोले दी गल, ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस दे विच ही वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर उस घर तो ज्यों निकले, ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है, मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिदा सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत होई, बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखा नू प्रभावित कर रहे है, नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नू देख रहे ने। स्वाभाविक पूछ रहे है, संत जी ए नाल कौन आए ने, ए केड़े संत ने? तो हुण तारुफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने, पर रह गई इना कपड़ियां दी गल, इस चोले दी, मैं इस दी गल नहीं करनी, ना गल करके भी कर गया। जद उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अग्गे रख दिता, आखिया तीन दफा तू नंगा कीता है, ऐ ले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना, तीन दफा तू उतरवाया है, तीन दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र दा भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अहंकारी अपने गुरु दी महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो मित्र नु छुपाएगा, मां बाप गुणवान ने ते उन्हां नु पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनु भी अहंकारी छुपाण दी कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज दी बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरे आरी, ये बड़े बुरे पुरुष आंदे ने अहंकारी, गुरु नू भी छुपांदे ने, क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर किथे? तो ये मित्र नू छुपांदे ने, पुत्र नू छुपांदे ने, अगर गुणवान है मां बाप नू पिछे सुटदे ने, सिर्फ अपने आप नू ही अग्गे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ए भी आउंदी है, रब नू भी पिछे सुटीए, परमात्मा नू भी पिछे सुटीए। और नाकश ने पिछे सुटन दी कोशिश कीती सी, नमरूद ने कह दिता सी कौन हुंदा है खुदा, मैं खुद खुदा हां। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नू भी नहीं मन सकदा, अहंकार जीवदा है मैं आश्रित तो ते बिल्कुल भूल जांदा है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है, बकरे दे बोल नू अग्गे करके, ते बकरे दा बोल है मैं मैं मैं, इसे नू आधार बना के इस शायर ने बड़ी सुंदर कल्पना की थी है।
فخر بکرے نے کیا بس میرے سوا کوئی نہیں.

पर छुरी कसा बने। कसाई दे छुरे हेठ आ गया, उन्हें जबा कर दिता, सिर वट दिता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकते

ये बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उसके हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान विच कोई रमण कर रहा हो, भ्रमण कर रहा हो, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है। और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान विच भयानक जंगल विच मनुख तनहा रह गया हो। असाध रोग है, किसे वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज फरमान करते ने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसके कोल, बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लभनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हुण जे किधरे अंदरों निकले तू तू तू इते औषधि हो गई। मैं इते रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने, इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है, तू है, तू है, कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही, प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह फरमान, ये वाक प्रेरणा दे रहा है, जे रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि का सेवन कर।

सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाटेओ। सतगुरु दी बाणी दा फरमान हुण काल दा जाल सानू वेख नहीं सकदा। काल दी फाई साडे ते पै नहीं सकदी। क्यों? असी सच दे मार्ग ते चल पए, असी सच दा पंथ बना लिया, असी सच दे राही बन गए। काल जाल जम जोहो न साखे सच का पंथा थाट्यो। काल समा अकाल समय तो रहत, थाई समय दी है, जाल समय दा है। मनुख वक्त दी गिरफ्त दे च है, मनुख समय दे बंधन दे च है, और समय दे प्रभाव हेठ जी रहे। वक्त समा काल मनुख तो जो चाहता है कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, और ये सब कुछ मनुख काल दे जाल दे च फस के ही कर रहे है। इंज कह लो बंधन दे च है। समय दा बोध होंदा है दिन करके रात करके। ठहर जाए दिन तो समय नु नापना औखा होवेगा, ठहर जाए रात तां वी समय नु नापना बड़ा औखा होवेगा। दिन ते रात दी ए गर्दिश समय नु नापण दा जरिया बनी, समय नु समझण दी एक प्रेरणा मिली दिन तो रात तो। लेकिन रात अपना एक बंधन लेके आंदी है, दिन अपनियां बेड़ियां लेके आंदा है। रात अपनी जाल लेके आंदी है, दिन अपनी फाई लेके आ जांदा है। शायद इसे वास्ते ते पातशाह ने फरमान कीता, जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई देती। दिन आया है एक जाल दी तरह, रात आई है एक जाल दी तरह, ते दिन ते रात दियां जो सठ घड़ियां ने ते सब फाइयां ने। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मोड़े कवन गुने। ए मूर्ख किमें छुटेगा, समा तेरे कोल कराई जा रहे है, और इस सब कुछ तो इस तरह करदा पे है जैसे फाई देच फड़िया कोई पंछी फड़फड़ांदा है, जैसे जाल देच फड़िया फसिया होया कोई पंछी फड़फड़ांदा है, तड़पदा है। तो इस तरह मनुख दिन नू तड़प रहे है, रात नू तड़प रहे है, जो कुछ कर रहे है बंधन ही बंधन, जो कुछ कर रहे है मजबूरी ही मजबूरी। समा खिंच के इस तो सब कुछ कराई जा रहे है। इस वास्ते भारत दा धार्मिक अध्ययन करता, धर्म दी गहराइयां च जान वाला, उसने परमात्मा नु एक नाम दिता है अकाल। परमात्मा दी दुनिया च समा नहीं है, वक्त नहीं है, उत्थे वक्त है ही नहीं।
संसार काल है, निरंकार अकाल है। जो संसार विच जी रहा है, काल विच जी रहा है, और जो अकाल नाल सुरत जोड़ बैठा है, उदे संसार तो उच्चा उठ गया, काल तो उच्चा उठ गया। विद्वाना ने समय दियां तीन धारावां मनियां ने, समय नूं तीन हिस्सों विच वंडिया है, भूत, भविष्य, वर्तमान, माजी, हाल, मुस्तकबिल। मनुख जी रहा है समय दियां इन्हां ही तीन धारावां विच। जद मनुख कहिंदा है मेरा मन टिक नहीं रहा, तो किथे चला गया? चला गया भूतकाल विच, चला गया भविष्य विच। मनुखी मन दी आदत है कदी भविष्य दी चिंता विच जीवना, कदी भूतकाल दियां यादां विच जीवना। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दा पिछोकड़ बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दी जीवन यात्रा पिछोकड़ बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। एक धमाका होया सी ब्रह्मंड विच, एक शब्द होया सी, फिर धुंध बनी, पानी बनिया, ठोस जीवन बनिया, वनस्पति, पशु, पक्षी, सहजे सहजे ए विकास चलदा रहा। अनंत काल तो बाद ए जीवन मिलिया, जिसनू मनुख कहंदे आ, तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। क्योंकि असी कदों तो हाँ ये नाप ही नहीं सकते। बल्कि भाई साहब भाई नंद लाल ते ऐसा कहंदे ने, नबूद हेच निशान हांजे जमीनो आसमा, कि शौके यादे तो आवर्द दर वजूद मरा। जमीन ते आसमान दा नामो निशान नहीं सी, नहीं सी। हे गुरु, हे प्रभु, मैं ते उदों दा यात्रा दे छां, पड़ाव ते बड़े आए, मंजिल नसीब नहीं हुई। रस्ते च वक्ती विश्राम करन लई थावां ते आईयां, सदीवी सुख, सदीवी विश्राम, ओह ते मंजिल ते लभना सी, मंजिल ते मिली नहीं। तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भविष्य नूं बहुत लमकाया जा सकता है, बहुत लमकाया जा सकता है। मनुख दियां इच्छावां, मनुख दियां वासनावां, मनुख दियां कामनावां नूं नापिए, तौलिए, इन्हां कामनावां विच ते सैकड़े नहीं लखां जिंदगियां जीवियां जा सकदियां ने। इतनी कामना, इतनी इच्छा, इतनी प्रबल वासना, इतनियां ख्वाहिशां, ये इस छोटी जिही जिंदगी लई बोझ ने, बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। जिंदगी छोटी, ख्वाहिश बहुत लंबी, बहुत लंबी, बहुत लंबी। जीवन सीमित है, कामनावां सीमित नहीं ने, वासनावां सीमित नहीं ने, असीम ने। जीवन सीमा विच कामना असीम, वासना असीम, इच्छावां असीम। इस वास्ते मनुख नूं समा चाहिदा है, अस्थान चाहिदा है। तो भविष्य बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। एक तीसरा समय जिसनूं कहिंदे ने वर्तमान, वर्तमान कितना होवेगा, वर्तमान नूं किस तरह नापीए। असीम है
भूतकाल, असीम है भविष्य, और मनुख इन्हां दोहां विच जीवदा है। जैसे पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहंदे ने, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघे उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रहियां। जो समा आण वाला है ओदी चिंता मैनू जला रही है। भविष्य दी चिंता जला रही है, भूतकाल दियां यादां खा रहियां ने। इंज मनुख कदी भविष्य विच जल रहा हुंदा है, कदी भूतकाल विच खाया जा रहा हुंदा है, मिटदा जा रहा है। वर्तमान एक इन्ना क है, वर्तमान बहुत छोटा है। वर्तमान दी सीमा है, इस वास्ते वर्तमान विच कोई जीवदा नहीं, और वर्तमान दे जो टिक गया उसे नू योगी कहंदे आ, उसे नू असी संत कहंदे आ, उसे नू असी भगत कहंदे आ, उसे नू ही आत्मदर्शी कहंदे आ। पर फिर भी ना पिए वर्तमान किन्ना क है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल इस नू नापदे ने, वर्तमान किन्ना कै। यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगां गुजस्त। वर्तमान ते एक दम है, एक दम एक क्षण एक सेकंड एक दम, इन एक दम जो मुंह दे च है नकद है, कोल है नकद है। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, मिलने ने कि नहीं। भूतकाल दम खर्च हो गया, दम ते लंग गए, उते वर्त ले, उते खर्च हो गए। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, नकद ते है ओही दम जो मुंह देच है। यकदम बहेश रान बुरदम के कीसतम, एक दम दी मैं विचार ना कीती, एक ही है। दम दम करके मेरी जिंदगी रायगां चली गई, व्यर्थ चली गई। यकदम बहेश रान बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगां गुजस्त। एकदम जो नकद से इनू मैं खर्च कीता, गुजरे हुए दमा दी याद विच, खर्च होए दमा दी याद विच। एकदम जो मेरे मुंह विच सी वर्तमान नकद, इनू मैं बतीत कीता आने वाले दमा दी चिंता। तो इस तरह यादां भूतकाल दियां, चिंतावां भविष्य दियां, वर्तमान विच ते कोई जीवदा ही नहीं, वर्तमान है एकदम। शायद इस वास्ते ही दुनिया भर दे महापुरुषां ने कहा है, परमात्मा जद मिलदा है एक क्षण विच मिलदा है, एक क्षण वर्तमान, एक सेकंड, एक चित्त जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। टुकदम करारी जो करे हाजर हजूर खुदा है, उस दम दे ची अपने आप नू रोक लवे। वो एक दम जो नकद है उस ते विच ही मनुख बैठ जाए,
حاضر حضور خدا ہے. اسے نے مہان صوفی سنت بابا فرید نے انج بیان کیتا ہے، آج ملاوا شیخ فرید تاکم گونجڑیاں منو مچندڑیاں، جس نال من مچھردا ہے جے تو کدرے روک سکیں، جے کدرے بھوت کال دیاں یاداں نو مٹا سکیں، جے کدرے بھوش دی چنتاواں نو تو جلا سکیں، ہنے ہی خدا تے پرگٹ، پربھو تے پرگٹ. پر ورتمان وچ پہنچن لئی تے بڑی سادھنا، بڑی تپسیا. ورتمان دے چی بھگوان پرگٹ ہوندا ہے، ورتمان دے چی پربھو دی جھلک ملدی ہے. شاید اسے واسطے مہان دارشنک اور گرمت دے مہان گیاتا تتویتا برہم گیانی بھائی صاحب بھائی گرداس جی، انہاں دا فرمان ورتمان وچ ورت دا ہوونہار سوئی پروانا. گرمکھ تے ورتمان وچ جیوندا ہے ایک چھن وچ، اور اس وچ جو کچھ ہو جائے ہو گیا ہے قبول پروان، اور جو ہو گیا قبول ہے پروان ہے. سمجھ لو یہ جو ہو گیا اس تو اچھا اٹھ گیا، یہ سنسار تو اچھا اٹھ گیا، کیونکہ سنسار وچ دکھ ہے سکھ ہے، ہاسے نے رونے نے، جنم ہے مرن ہے، نفع ہے نقصان ہے. سنسار وچ عزت ہے بےزتی ہے، تندرستی ہے بیماریاں نے، سوپن ہے کروپتا ہے. اچھا اٹھ گیا ایک دم وچ، جد ٹکیا تو ایک پرگٹ ہویا دو مٹ گیا، دو مٹ گئے سنسار مٹ گیا، ایک پرگٹ ہو گیا نرنکار پرگٹ ہو گیا. تو ایک دم وچ ہی پرگٹ ہو گئے گا. بہتے دم جو خرچ ہو گئے نے انہاں دی یاد وچ پرماتما کتھے، انہاں دماں دی یاد وچ تے کچھ دکھ ہون گے کچھ سکھ ہون گے. بیٹھا ہوندا ہے منک یاداں وچ، کدی دکھ دیاں یاداں کدی سکھ دیاں یاداں، کدی

इस विषय ते इतना बोलिया नहीं गया, लिखया नहीं गया। और जद किसी ने कुछ लिखया है तो उस ग्रंथ नु धर्म ग्रंथ नहीं आख्या गया। जद कोई बोलिया है तो उन्हां बोलां नु धार्मिक बोल नहीं आख्या गया। हद हो गई। जिस तो जीवन जमे है उस संबंध बोल इन एक पासे रख दिए, धर्म का हिस्सा ना मानिए तो फिर ये इंज हो जिम्मे कह दिए जन्म ही नहीं होया, या जिथो जन्म होया असी इस मनते ही नहीं। जीवन उदो सफल हो जाता है ये जमे काम दे चां ये लीन होवे राम दे च, यात्रा सफल हो जाती है। चिक्कड़ तो जमे है पर चिक्कड़ ते पानी दोहां तो उच्चा उठे। काम तो जमे है पर ए काम ते पदार्था दोहां तो उच्चा उठे, पानी तो भी उच्चा उठे। कई दफा जोर नाल वधिया होया पानी भी डुबो के रख देंदा है, उपर नहीं उठन देंदा। अचानक धनवान हो गया है, अचानक सता मिल गई है, प्रभुता मिल गई है, बड़ी तेजी दे नाल धन संपदा आई है, नहीं संभाल सकया, गर्क हो गया, डूब गया। आहिस्ता आहिस्ता जब सरोवर दे पानी पैंदा है आहिस्ता आहिस्ता फुल भी उपर उठता रहिंदा है, पर विरले कोई फुल ने ऐसे जो तीबर गति दे अपने आप नू तीबर गति च उठा सकन। पानी दा वेक बड़ा तीबर होवे, बड़े तीबरता दे नाल पानी वद्दा जा रहा है, उच्चा हो रहा है, और इसी तीबरता दे नाल वो अपने आप नू उच्चा कर सके कठिन हो जाता है, औखा हो जाता है। काम ही एक शराब है जो एक कलाल अपनी दुकान ते सजा के बैठा है, वेच रहा है, पी रहा है, पिला रहा है। कल कलवाली काम मद मनुआ पी मनुहार, क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार। ए समा ए युग ते कलाल है, काम दियां बोतलां काम दी शराब सजा के बैठा है, पर किस प्याले विच पीती जांदी है और साकी कौन है, पिलाण वाला कौन है। कहिंदन कलाल होवे शराब होवे प्याला नहीं साकी नहीं तो मैं खाने दा रंग नहीं जमदा। इस कलाल दा जो मैखाना है रंग जमे आया है। काम मद कल कल वाली काम मद मनुआ पीवण हार, क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार। प्याला है क्रोध दा, साकी है अहंकार, और शराबी शराब दे पीण वाला है मनुख दा ए मन। तन भावें सारियां दे पानी पीण वाले होवन, मन ते सारियां दे शराब पीण वाले। तन भावें दुध पीण वाले होन, मन ते सारियां दे शराबी ने। ए गल वखरी है, दिस पैंदा है ए मुंह नाल दुध पी रहा है, मन नाल शराब पी रहा है। मुंह नाल भोजन छक रहा है पर मन नाल ते शराब ही पी रहा है, शराब ही। काम दी शराब, शराब दा काम की है बेहोश करना। काम वासना एक ऐसी बेहोशी है जिस विच मनुख नू अपना नाम धाम कुछ भी चेते नहीं रहिंदा। कहिंदे जन्म दा कारण भी बेहोशी है, मरण दा साधन भी बेहोशी है। बेहोशी च जमदा है, बेहोशी च मरदा है। बेहोशी दे च मरण दी क्रिया चल रही है और बेहोशी दे च ही जन्म दी क्रिया चल रही है। बेहोशी हावी है जद काम

ਮਨ ਦੇ ਚ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਦੇ ਚ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਚ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਾ ਫਿਰ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤੋ ਅਗੰਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨੇ ਆਵਨ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਲਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਇਹ ਕਟੋਰਾ ਹੈ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਮੋਹ ਭਰੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰਿਆ ਮੂੰਹ ਕਟੋਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਅੱਖਾਂ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੱਥਾਂ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਸਥੂਲ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਸਖਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਥੀ ਸਖਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂ ਇਸੀ ਲੀਏ ਨਾ ਹੱਡੀ ਰੱਖੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚ ਉਸਨੇ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਖਤੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚ ਹੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਲਕ ਦੇ ਚ ਹੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਬਹੁਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਾਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਅਗਰ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਹ ਭਰੀ ਪਿਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰ ਪਿਲਾਵਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਕੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿਤਨਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਾਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕਾਇਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅਸੀਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਸੀਮ ਕਾਮ ਅਗਰ ਕਾਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਕਾਇਆ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇ ਹੀ ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਸੋਨਾ ਕੀ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਇਆ ਹੀ ਸੋਨਾ ਹੈ ਕਾਇਆ ਹੀ ਕੰਚਨ ਹੈ ਪਰ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ੰਗਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦ ਮਨਵਾ ਪੀਵਣ ਹਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਹ ਭਰੀ ਪਿਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰ ਮਜਲਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹਿਫਿਲ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਾਥੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਸਾਥ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜਲਸ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜਲਸ ਕੂੜੇ ਲੱਭਦੀ ਪੀ ਪੀ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਝੂਠੇ ਲੋਭ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲੋਭੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚ ਹੈ
लोभ असीम है। कितना जीवेगा? 100 साल, चलो 150 साल तक जी रहेगा। जीवन दी सीमा है, मनुख दे लोभ दी सीमा नहीं है। अज तक किसी भी पैमाने नाल मनुख दा लोभ नापिया नहीं गया। ये गल वखरी है, हिमालिया दी बुलंदी नाप ली गई है, प्रशांत महासागर दी गहराई नाप ली गई है, सूरज चंद तारियां दी बुलंदी नाप ली गई है। ये लोभ किथे खत्म होंदा है? सीमा अजे भी पकड़ च नहीं आई। किथे खत्म होवेगा? किथे गल मुकेगी? इति सहस खटे लख को उठ धावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। कहिंदे ने एक राजे ने एक भिक्षु नो, बौद्ध भिक्षु नो बेनती की थी, बड़ा आनंद दिखाई देंदा है थोड़े कोल, बड़ा सरूर, बड़ा रस, साड़ी झोली च भी पाओ। ये भिक्षु कहन लगा, अच्छा मैं कल जब थोड़े द्वार ते भिक्षा मंगण आवांगा तो कुछ भिक्षा मैं थोड़ी झोली च भी पा देंगा। तुसी पदार्थ मेरे पात्र दे च पाणा, परमात्मा दी कुछ गल्ला मैं थोड़े पात्र दे च पाण दी कोशिश करांगा। और अक्सर संत ते संसारी पदार्थ ते परमात्मा दा वट्टा सट्टा करदे ही रहे ने। वो पदार्थ चोली च पा देंदे रहे ने, वो परमात्मा दी गल सुना देंदा रहे। आदकाल तो ऐसा चलदा रहे। राजा खुश होया और कहन लगा, ऐ भिक्षु फिर कल सब तो पहले साढ़े घर ही आना, इत्थे ही आना, असी भिक्षा लेके खड़े आवांगे। अक्सर बौद्ध भिक्षुआं नूं भिक्षा देण लई भिक्षा दाते बार खड़े होंदे ने और देंदे ने। जिथे जिथे बौद्ध धर्म है, ये दृश्य बहुत देखण नूं मिलदे ने। राजा भिक्षा लेके पके हुए पकवान तरह तरह दे बार लेके खड़ा है। भिक्षु पात्र ले आया और आखिया, राजन पाओ। वो खीर पाई, राजे ने थल्ले डुल गई। भिक्षु ने किया, होर पदार्थ पाओ। राजे ने सोचा शायद कोई करामाती गल होवे, पात्र आपे ठीक हो जाए। तो फिर हलवा पाया, पूड़ियां पाईया, थल्ले डिग गई। होर पदार्थ पाओ, तरह तरह दे बने हुए होर पकवान उस पात्र दे पाए, पकवान थल्ले बिखर दे गए, गिर दे गए। भिक्षु दा पात्र अगे है। राजा कहिंदा है, ऐ भिक्षु तुसी भिक्षा मंगण ते आ गए और राज द्वार ते आए, पर कम से कम अपना भिक्षा पात्र ते वेख लेंदे, ये ते टूटिया होया, इहदा थल्ले पेंदा ही नहीं है। राजन फिर मैं यही गल तैनू आखा, तू रब दी गल मैथों सुनना चाहना है, परमात्मा दा ज्ञान मैथों लेना चाहना है, तैनू अपना छलनी मन नहीं दिखाई देंदा। तेरे दित्ते हुए पदार्थ मेरे पात्र तो डुल गए, मेरा दित्ता होया परमात्मा दा ज्ञान भी तेरे पात्र तो डुल जाएगा। पहले अपना पात्र ठीक कर, भिक्षा मिल जाएगी। पहले अपना मन ठीक कर, भगवान मिल जाएगा। मजलस कूड़े लबदी पी पी होए खुआर, इस शराब नू पी पी के दुनिया खुआर हो रही है और अपना जीवन अजाई गवा रही है। लेकिन शराब नाल कबाब जुड़े होया है। और अक्सर जब शराब दी गल चले, शराबो कबाब, कबाब दी गल चले, शराबो कबाब, कबाबो शराब, शराब कबाब खांदे हो। हालांकि एक पीण वाला है, एक खाण वाला है, पर शराब नाल कबाब जुड़ गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, कबाब खाने ने तो जिस ढंग नाल मैं तेनू जबा करन नू दसदा,
بکرے نو اس ڈنگ نال زبا کر، اور جد توں اس چھرے نال زبا کرے گا اور میرے دسے ڈنگ دے مطابق کرے گا، تے جد اس بکرے چ خون نکل جائے گا، جان نکل جائے گی، وہ جڑا ماس ہوے گا جی کدرے توں کھا لوے کدی زندگی چ تینوں بوکھی نہیں لگے گی، ہر وقت رجیا رہے گا، ہر وقت ترپت رہے گا۔ تو جی ہن پوچھئے بابا کیڑا چھرا ہے؟ گرو نانک دے بول بڑے قیمتی، سچ کی کاتی سچ سب سار، چھرا ہوئے سچ دا۔ سچ نو چھرا کیوں کہہ دیتا؟ سچ ایسا چھرا ہے یہ دو دھارا کھنڈا ہے اور دو نوکا کھنڈا ہے، سچ بولاں گے دوجے نو بھی چبھدا ہے اپنے نو بھی چبھدا ہے، یہ دوجے نو بھی قائل کرے گا اپنے نو بھی کرے گا۔ اس واسطے سچ بولنا کٹھن ہے، کٹھن ہے، یہ دوجے نو چبھے گا پر اپنے نو بھی چبھے گا، اور جد چبھے گا کٹے گا تو چھرے دا ایک کم ہے، جد کسے دی گردن کٹے، کسے دے انگ نو کٹے، کسے نو چبھے تو خون تے نکلے گا۔ اگر سچ دے چھرے نال زبا کریے اور سچ دا چھرا اے چبھے دو دارا تو جھوٹ تے نکلے گا، جھوٹ دا ہی خون منک دے اندر ہے، خون نہیں ہے جھوٹ ہے منک دے اندر۔ باہر دے چھرے نال شریر چو خون نکلدا ہے، سچ دے چھرے نال کوئی زبا ہوئے اندروں جھوٹ نکلدا ہے۔ سچ کی کاتی سچ سب سار، گھاڑ تس کی اپر اپار، یہ جو سچ دا چھرا ہے یہ دا لوہا سچ ہے، اس دی جو دھارا ہے گھاڑت ہے وہ بھی سچ ہے۔ کس کا کٹھا ہووے سیکھ، لہو لب نکھتھا ویکھ۔ اگر اس چھرے نال جی کدھر کٹھا کریں، دو طریقے نے، کٹھا جھٹکا، ایک جھٹکے نال گردن الگ کیتی جھٹکا، آہستہ آہستہ ریت کے گردن الگ کیتی، اینو کٹھا کہندے نے، کوہنا آہستہ آہستہ۔ جے تو اس ڈھنگ نال آہستہ آہستہ کوویں، سچ نو سہجے اچارن کرنا پیندا ہے، اور سچ کی ہے پرماتما دا نام، یہ پہلے زبان تے آوے تو زبان دے چوں ہڈی نکلے گی، زبان دے چوں سختی نکلے گی۔ یہ ہو نہیں سکدا، جس زبان تے رام ہے اس زبان دے سختی ہوئے، جس زبان تے واہگرو ہے اس زبان تے کرود ہوئے، یہ ہو ہی نہیں سکدا۔ زہر اس گل دا ثبوت ہے، اجے زبان نے امرت دا رس نہیں مانے، سختی اس گل دا ثبوت ہے، یہ زبان زبان نہیں رہ گئی، کیونکہ زبان دے ہڈی نہیں آندی، زبان دے سختی نہیں آندی، زبان دے ہڈی آ گئی ہے، یہ ماس دا ٹکڑا تے بن کے رہ گئی، زبان نہیں ہے۔ تس کا کٹھا ہووے سیک، لہو لب نکھتھا ویک۔ پرماتما دے نام نو چھرا کہہ دیتا ہے گرو نانک نے، ایسا چھرا ہے کو کے رکھ دے گا، چھرے نے کونا ہے تو نکلے گا کی، نکلے گا کام، نکلے گا لوبھ۔ ایک کسائی چھرا پھیرتا ہے بکرے تھے، نکلتا ہے خون۔ بعد وچ آندرا اوجری کڈ کے پرے سٹدا ہے، پر سچ دے چھرے نال جد کسے دا من زبا ہوندا ہے، لوبھ نکل جاندا ہے، واشنا نکل جاندی ہے، شدھ ماس رہ جاندا ہے، شدھ من رہ جاندا ہے، اسے نو کہندے نے من شدھ ہو گئے، من پاون ہو گئے۔ سچ کی کاتی
सच सब सार गाड़त तिसकी अपर अपार तिसका कुठा होवे सेख लहू लब निखता वेख। ए शेख जे इस छुरे दा किधरे तू जवा कीता होया मांस खा लवें। परमात्मा ने कबूल कर लेना है, ईश्वर ने कबूल कर लेना है। खा मांस जरूर खा, पी शराब जरूर पी, पर केड़ी शराब? धन गुरु नानक देव जी महाराज की जिंदगी दे नाल बोल जुड़े हुए ने, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम दी शराब पी। तो नाम शराब है, हां नाम एक ऐसी शराब है और ऐसा सरूर तारी हो जाता है, सारे दुख मिट जाते हैं, सारे विकार निकल जाते हैं। बाहर दी शराब जितने जितने घुट अंदर जाएगी, वो शराब ही अंदर नहीं जा रही, विकार भी अंदर जा रहे हैं। शराबी कामी होवेगा, शराबी क्रोधी होवेगा, शराबी भोगी होवेगा, सारा अनर्थ शराब नाल जुड़ गया। बेशतर मुल्कां दे शराब पानी दी तरह पीती जा रही है, दुराचार आम हो गए, या इंज कह लो दुराचार दे बाजार, बाजार ही दुराचार दा रूप धारण कर गए। बिकदियां सन जिनसां किसे वक्त बाजार विच, कपड़ा बिकदा सी, सोना चांदी बिकदा सी, फल फुल बिकदे सन, पर ए बाजार अज मामूली रह गए ने। इस्त्री दी असमत बिकदी है, इज्जत बिकदी है, इन्हां बाजारां दी महिमा बहुत वड्डी होगी। ए नाम मात्र कहलाण वाले क्लब, ए थिएटर और इस तरह की आयाश की दुनिया, वैश्याले सब असमत फिरोशी दे अड्डे, बिकती है असमत इस्त्री दी। बाजार देच हुण दुराचार बिकदा है, बाजार देच वस्तुआं नहीं। अगर कोई नाम दी शराब पी लवे, इस शराब किवें बनेगी? गुड़ कर ज्ञान, ध्यान कर मऊआ, पहु भाटी तन धारा, रब्बी भय दी भट्ठी बना, उहदे च रब्बी ज्ञान दा गुड़ पा, उहदे च रब्बी ध्यान दा मऊआ पा, मऊआ एक फुल, ते भय दी भट्ठी। मनुख समाज तो डरदा है, मनुख कानून तो डरदा है, मनुख परमात्मा तो नहीं डरदा। संकोचमई बिरती बना देंदा है कानून दा भय, समाज दा भय, भी समाज दियां नजरां नहीं ने ते हुण मैं गुनाह करा, कानून दी पहुंच नहीं है ते हुण मैं पाप करा। है ते पापी, पर पाप उत्थे करेगा जिथे तक कानून दी निगाह नहीं पहुंच सकदी। है ते गुनाहगार, पर गुनाह उत्थे करेगा जिथे समाज दियां नजरां नहीं पहुंच सकदियां। लेकिन रब दा भय अगर ए मनदा है तो गुनाह होवेगा ही नहीं, पाप होवेगा ही नहीं। रब्बी भय ने पवित्र करके रख देना है, शुद्ध करके रख देना है। ए भय दी तू भट्ठी बना, एदे च पा ज्ञान दा गुड़, एदे च पा ध्यान दा मऊआ। अग केड़ी इस भट्ठी दे तले बालनी है, दो पुर जोर रसाई पाठी, पियो महारस भारी, काम क्रोध दोए किए जलेता, छूट गई संसारी। दो पुर जोर, सुरत ते शब्द नु जोड़, ये दो पुड़ा नु जोड़ के बना चुल्ला, दो पुड़ा नु जोड़ के चुल्ला बनदा है। सुरत दे शब्द नु कठा करे बना चुल्ला, इस दे ते रख भय दी भट्ठी है, पा ज्ञान दा गुड़ ध्यान दा मऊआ। थले बालन केड़ा डाणा है, काम क्रोध दोए किए जलेता, छूट गई संसारी। काम दा ईंधन, क्रोध दा ईंधन, ए थले बाल। जैसे जैसे तू ज्ञान दा गुड़ पांदा जाएगा, ध्यान दा मऊआ पांदा जाएगा,
और जैसे जैसे ते तू सिर ते शब्द नो एक करदा जाएगा, काम सड़दा जाएगा, क्रोध सड़दा जाएगा, आखिर ईंधन ही ते जलदा है। तो काम ईंधन है, जलेगा, क्रोध ईंधन है, जलेगा। काम क्रोध करके जिंदगी चल दिए, ईंधन करके जिंदगी चल दिए, अग करके ये अग खत्म होवेगी, क्योंकि ईंधन उतने चिर तक ईंधन है जो कारामद होवे। ईंधन उदो बर्बादी बन जाता है जब अग मकान नू लग जाए, दुकान नू लग जाए, साड़ के राख कर देवे। काम क्रोध दो किए जले ता, छूट गई संसारी, सड़ गया क्रोध, सड़ गया काम। वो जो ज्ञान दा गुड़ सी, वो जो ध्यान दा महुआ सी, वो ऐसा पकया, उदे चो निकली शराब नाम दी, उदे चो निकली शराब प्रभु दे सिमरन दी। तो पुछिए कबीर, ये शराब बनानी किस तो सीखी, कौन सिखांदा है? इस तरह दे शब्द धन गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज ते भगत कबीर दे, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बहुत सारे ने। प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, सतगुर ते सुद पाई, दास कबीर तास मद माता, उचक न कब हो जाई। ए समझ गुरु तो लई है, और जिस दिन दी ये शराब पीती है, और बाकी शराब पीण नू जी नहीं करदा, राम दा रस आउंदिया ही काम दा रस मिट जांदा है, राम दा रस आउंदिया ही क्रोध खत्म हो जांदा है, राम दा रस आउंदिया रोम रोम दे चों लोभ निकल जांदा है, जीवन अमृतमयी हो जांदा है। और जिंदगी जद अमृतमयी हो गई है तो पहचान के बोल अमृतमयी हो जांदे ने, दृष्टि अमृतमयी हो जांदी है, जहरीले बोल दसदे ने जीवन जहर है। ये फिक्की दृष्टि दसती है, ये जहरीली निगाहां दसदियां ने जिंदगी जहर है। जहर नू अमृत बनाण दी जाच जे आ जाए भगत है, पर जे अमृत नू जहर बनाई जा रहे है तो फिर ये संसारी है, मूड है, नादान है। कुदरत ने एक ऐसा नियम बनाया है, अमृत जहर बन सकती है और जहर भी अमृत बन सकता है। शायद इसे वास्ते डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कह दिता, जो जहर हला हल है, जो जहर हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। जे किधरे तेनु पीण दा ढंग आ जाए तो काम रस भी राम रस हो सकता है, जे तेनु पीण दा ढंग नहीं आया तो राम रस भी काम रस दे बदल सकता है, जहर भी अमृत हो सकती है, अमृत भी जहर हो सकता है अगर तेनु पीण दा ढंग नहीं आया। संखिया जहर है पर हकीम मार के उसनु कुश्ता बना देंदा है। अमृत अंगूरां दा रस अमृत है, गन्ने दा रस अमृत है, पर एक कलाल तरका के उसनु शराब बना देंदा है, कौड़ा बना देंदा है। मिठे नु कौड़ा कीता जा सकदा है, कौड़े नु मिठा कीता जा सकदा है, अमृत नु जहर बनाया जा सकदा है, जहर नु अमृत बनाया जा सकदा है। जिसने जहर नु अमृत बना लिया संत, और जिन्हें अमृत नु जहर बना लिया दुष्ट संसारी। तो ये दो तरह की जिंदगी मिलती है जगत दे, जहरमयी अमृतमयी। पर अमृत बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, बहुत विरले ने जिन्होंने संखिए दा कुश्ता बनाया हुए, बहुते ने जिन्होंने अंगूर दी शराब बना ली, संतरे दी शराब बना ली, मिठे गन्ने दे रस दी शराब बना ली, थोड़े ने जिन्होंने जिंदगी नू मिठास नाल भर दिता, बहुते ने जिन्होंने कुड़त्तन दे नाल अपने जीवन नू गर्क कर लिया, बहुत कौड़ा कर लिया, बहुत कौड़ा कर लिया। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, युग दे प्रभाव तो बचण वास्ते, क्योंकि युग ते कलाल है, शराब सजा के बैठा है, तो युग दे प्रभाव तो बचण लई ए पुरख तू सतसंग कर, सत दी विचार कर, सत दा चिंतन कर, ताकि युग दे प्रभाव तो तू बच सके।
इस कलाली तो तेरी जान छिड़ सके और तू ओ रस पीवे कि जगत दे सारे रस फिक्के पै जान व्यर्थ हो जान। और इसे प्रथाएं सतगुरु ने पंक्ति उच्चारण की थी, बिखे बन फीका त्याग रीर सखिए नाम महारस पियो। एक ही जहर तो पी रही है, अमृत भी अमृत भी अमृत भी नाम रस अमृत है। और इसकी खूबी है इनू पींदे ही सारी जहर शरीर चो निकल दी है, सारे फिके रस शरीर चो निकलते ने। सतगुर ए अवस्था हर एक दी बनावे।